FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है.
1: What is your behavior of choice this evening? Do I sound a little cheesy?
2: Where's the money?

0: system, but it's love for money.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: साज दिल जब सदा नहीं देता, कोई नगमा मजा नहीं देता।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: smack him back.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: In the way to start, this is a matter in the house. Come on.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: तरफ बेगानगी है, कल भी एक आरजू थी और आज भी एक आरजू है, काश कोई हम सफर मिल जाए।
1: कोई हम सफर नहीं है, कोई जाने जाने।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: हेलो हेलो, हू इज देयर?

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम आज 24/5/2026 का लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 11 बज चुके हैं। हमारा रूटीन का प्रोग्राम जिस तरह होता है, तलावत, नात, खिताब और हमारे थिंक टैंक आते हैं, इसके अलावा यहाँ की जो लोकल ख़बरें होती हैं हम उस पर बात करते हैं, मौसम पर बात करते हैं, बीमारियों पर बात करते हैं। मौसम आज ये बहुत अच्छा है, जो कुछ हफ्ते में होता है उस पर भी हम बात करते हैं, जो लोकल कम्युनिटी के फंक्शन होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, सियासत के हवाले से, कम्यून के हवाले से, या लोकल हमारी जो मीटिंग्स होती हैं उसके हवाले से, जो लोकल इन्फॉर्मेशन होती है, सब नाज़रीन कोशिश करते हैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करें। आपके पास जो मालूमात होती है आप भी मालूमात देते हैं, कम्यून के हवाले से जो सिटी काउंसलर होते हैं वो भी मालूमात देते हैं। तो समझ, ये मिला जुला मल्टी किस्म का प्रोग्राम होता है, गपशप की शक्ल में भी होता है, इंटरव्यूज़ की शक्ल में भी होता है, और आपके लिए भी ये टाइम हाजिर होता है। अगर आप इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, इस टाइम पर आप अपनी बात करना चाहते हैं, तो आप पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। अब आने वाला वक्त वो बातों से नहीं पूरा होगा, अब आने वाला वक्त होगा आपने प्रैक्टिकली क्या काम करना है। एक दूसरे की बैक बाइटिंग करने से ये बिल्कुल काम नहीं चलेगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी, बरादरीज़म में भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। हम बरादरियों में जहाँ पैदा होता है बरादरियाँ होती हैं, और इसमें कोई शक नहीं, पहचान है हमारी, इसकी मैं कोई दो राय नहीं। लेकिन आने वाले जो इलेक्शन है, जब आप वोट डालते हैं उस पर जो वोट होता है वो सबका बराबर वोट होता है, वो किसी हिसाब का नहीं, उसका पढ़े लिखे का भी वोट होता है, अनपढ़ का भी वोट होता है। यहाँ तो कोई अनपढ़ ही नहीं है, आप सबके बच्चे माशाल्लाह हायर एजुकेशन में चले गए, बड़ी बड़ी जगहों पे काम करते हैं, बहुत सारे थिंक टैंक और भी लोग आ गए हैं, नौजवान आ गए। अगली दफ़ा आप देखिएगा कि मून की सियासत में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ होंगी, पार्लीमेंट में तब्दीलियाँ होंगी, जो लीडर बात करें सामिन क्रम, ये जो एक दूसरे को इधर कर दें, दूसरे को उधर कर दें, इससे कतन कोई फ़ायदा नहीं हो, आने वाली नस्ल को कतन कोई फ़ायदा नहीं, उससे निकले अब 70-71 वाले अंडे से बाहर। 70-71 वालों ने जो अंडा दिया था, आज बच्चा वो अंडे बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह, यूनिवर्सिटियों में चले गए हैं, कॉलेजों में चले गए हैं, वो वालदैन 70-71 वाले जो थे ना, वो सलूट के काबिल, उन्हें सलाम करना चाहिए कि वो उन्होंने इस मुल्क को ढूंढा, यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने बच्चे उनके बच्चे तालीम हासिल कर गए। तो समाज नाज़रीन एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि एक दूसरे की टांगें खींचनी चाहिए। जिस तरह मौसम तब्दील होता है ना, तो इसी तरह सियासत की तरह आप भी तब्दील ना हुआ करें, अपना मौक़िफ़ रखें, आपको हक है अपना मौक़िफ़ रखने का। यहाँ की जो सियासी जमातें हैं इनकी तरफ तवज्जो दें, इनके मेंबर बने, और बहुत सारे मेंबर बन चुके हैं, हम आपको खबर दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग अब सियासी जमातों के मेंबर बन चुके हैं, अगली दफ़ा सियासत में इलेक्शन लड़ने की वो तैयारियाँ भी करें, अगले कम्यून में नए लोग आएंगे, पार्लीमेंट में नए लोग आएंगे। तो समाज नाज़रीन इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मुझे आप बताएं कि पाकिस्तान की सियासत बहुत अच्छी है, उन्हें करनी चाहिए, हमारा मुल्क है, अब हमारी जाए पैदाश है, वो तो लोग बात करते हैं, सियासी जमातें सारी यहाँ मौजूद हैं, आपने इन जमातों में यहाँ आपने तवज्जो देनी है। अगर तवज्जो देनी है तो जाकर आपको पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना चाहिए, वहाँ जाकर इलेक्शन लड़े, रहते यहाँ हैं, खाते पीते काम यहाँ करते हैं, तो फिक्र आपको पड़ा रहता है। मुझे बताएं कि आपको लीडरान क्या देते हैं, जो ज़ाहिर जिस जमात का होता है उसको जमात अच्छी लगती है और अच्छी लगनी भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको सीरियस होना चाहिए, संजीदा होना चाहिए, संजीदा सियासत करनी चाहिए। आप पीछे के भी सियासतदानों के गुलाम बनना चाहते हैं, गुलाम बनकर सियासत करना चाहते हैं, इस तरह तो सियासत नहीं होती, सियासत को सियासत के तरीके से किया जाता है। यहाँ की जो सियासी जमातें आप इनके मेंबर बने, बड़ी वैल्यूज़ होती है। आपने देखा नहीं जब कम्यून्स के प्रोग्राम होते हैं, किसी भी आप कम्यून में जाते हैं तो जो हाल आपको किराए पर मिलते हैं, प्रोग्राम काली हाल ही में प्रोग्राम हुआ तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि कितनी ही फैसिलिटीज़ होती है। अगर आप मेंबर ना बने हो कम्यून के तो कम्यून्स आपको फैसिलिटीज़, आपके मेंबर बन गए, आपके डिप्टी मेयर बन गए, अब इंशाल्लाह मेयर भी बन जाएंगे, बहुत कुछ होगा आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, जो नई जनरेशन आ रही है डेफिनेट इन्होंने तरक्की कर रही है। आप इसे वहीं खींच के लेना ले जाना चाहते हैं, वही डर्टी पॉलिटिक्स की तरफ खींचना चाहते, उसी गड़े में करना चाहते। मुझे नहीं समझ आती, कभी आप गटर में मुंह करें तो गटर में जब आप मुंह डालेंगे तो आपको क्या खुशबू आएगी, सेट की खुशबू आएगी। दुनिया जहां के अतर इसको गटर पर डाल दें तो कभी आपको खुशबू नहीं आती, सवाल ही नहीं पैदा, आपको गंदगी की ढेर की बू आएगी। तो लिहाजा आपको कोशिश करनी चाहिए, अगर आप गटर में मुंह डालेंगे तो क्या निकलेगा उससे, किस तरह की खुशबू आएगी आपको। तो समय नाज़रीन हमारे साथ साथ रहिए, बाकायदा प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: पर।
1: तुम इन पर दारोगा नहीं हो? हाँ, जिसने मुंह फेरा और ना माना।
0: فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامع ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 12:02 ہوا چاہتے ہیں، 24/5/2026 کا پروگرام ہے۔ سامعین، ہمارا وعدہ ہوتا ہے کہ آپ کو تازہ ترین معلومات دیں گے، خبریں دیں گے، لوکل خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جو ہمارے ساتھ ہماری کمیونٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں اس پر بھی ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ موسم کی بھی بات کرتے ہیں، بیماریوں کی بھی بات کرتے ہیں، سیاسی بیماریوں کی بھی بات کرتے ہیں۔ آنے والے جو الیکشن ہے کمیونز کے، پارلیمنٹ کے، بعض جگہوں پر تینوں الیکشن جو ہے ایک ہی دن ہوتے ہیں، اور ہر جگہ یہ سسٹم ہے، کئی جگہوں پر نہیں ہوتے۔ ہمارے ممالک میں اپنے اپنے طریقے سے ہوتے ہیں، یورپ میں اپنے طریقے سے ہوتے ہیں، اسکینڈینیویا کا اپنا نظام ہے۔ تو سامان یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک نوجوان سیاستدان لائن پر موجود ہیں، جنہیں آپ اکثر آپ سنتے ہوئے رہتے ہیں، معلومات کے حوالے سے بھی۔ کیمیکل یہ انجینئر ہے، میری مراد ہے کمال، کیا نام ہے، کامران قریشی۔ کامران، آپ کو ایک بار پھر ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔
1: وعلیکم السلام آپ کے سامعین کو میری طرف سے بہت السلام علیکم رحمۃ اللہ، اور ایسا بہت شکریہ۔ آپ ماشاء اللہ کئی سالوں سے، بلکہ کئی دہائیوں سے میں کہوں گا کہ آپ ماشاء اللہ پاکستانی اسپیشلی پوری کمیونٹی کے لیے، ایون پورے اسکینڈینیویا میں میں کہوں گا، آل اوور یورپ، آپ بہت ماشاء اللہ کنٹینیولی انفارمیشن دے رہے ہیں، میڈیا کو آپ نے ٹیک کیئر کیا ہے، تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔
0: شکریہ کامران۔ کامران، آپ سیاستدان بھی ہیں، موسم بھی دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ جس طرح یہاں موسم تبدیل ہوتا ہے، بارش لگی ہوتی ہے، دھوپ نکل آتی ہے، سایہ آ جاتا ہے، سردی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک دم گرمی آ جاتی ہے، اسی طرح سیاست بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اور آپ چونکہ سیاستدان بھی ہیں اور سیاسی حوالے سے آپ بات کریں گے، اس دفعہ جو سیاست تبدیل ہو رہی ہے مالمو سویڈن میں، پورے سویڈن میں الیکشن آنے والے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔
1: جی، پہلے تو میں آپ کے سامنے کو تھوڑی سی انفارمیشن دوں گا کہ 13 ستمبر 2026 کو نا، تو یہاں پر سویڈن میں الیکشن ہو رہے ہیں، اور یہاں پر آپ کو پتا ہے ایک ہی دن میں سارے الیکشن ہوتے ہیں، مطلب کمیون کے بھی ہوتے ہیں، ریگیون کے بھی ہوتے ہیں، مطلب صوبائی اور قومی بھی ہوتے ہیں، اور میونسپل بھی ہوتے ہیں، یعنی بلدیاتی ہو گئے، صوبائی ہو گئے اور قومی ہو گئے، وہ ایک ہی مطلب ہے، اس ہوتے ہیں، کو پتا کن کن طرح نہیں ہوتے، ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ الیکشن کا دور ہے، اور میں آپ کے اس ریڈیو کے توسط سے سب کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ پلیز ایک جو ووٹ ہوتا ہے اس کو ایز اے آپ امانت سمجھیں، اور یہ بہت ضروری ہے، یہ طے کرتا ہے آپ کی جنریشن، آپ کی کس طرح یہ قانون بننے ہیں، کس طرح یہ 5-4 سال کے لیے جو کیسے نظر آئے گا، ان کی جو منشور ہوتے ہیں پارٹیز کے، جو ان کے خیالات ہوتے ہیں، جو ان کو ووٹ دیتے ہیں، تو وہ آپ اس پارٹی کے خیالات پڑھ کے آپ اس ملک کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ملک کس طرح 4 سال تک کیا اس کی پالیسی ہوں گی اور کیا وہ کرنے جا رہا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک میں ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہم ارننگ کرتے ہیں، ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہم اس کو اپنے مطلب اس کے سٹیزن ہیں، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں رہنا ہے، ہم نے ہمارے جنریشن، کسی کی دوسری جنریشن ہے، کسی کی تھرڈ جنریشن ہے، وہ یہاں پر آ رہی ہے، اور کئی لوگ یہاں فوت بھی ہو گئے ہیں، ادھر ہم رہ رہے ہیں اور اس کو اپنا ملک سمجھتے ہیں، اور سمجھنا بھی چاہیے۔ تو یہاں کائنڈلی پلیز آپ ووٹ لاسٹ میں ڈالا کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ جی
0: سر کامران، آپ نے ووٹ کے متعلق بتایا، تو یہ جو الیکشن آپ نے ذکر کیا، یہ تینوں الیکشن جو ہیں وہ ایک ہی دن پورے ملک میں ہو رہے ہیں، تو اس میں ڈیفینیٹ غیر ملکی نژاد، پاکستانی نژاد، جو سویڈش ہیں، ڈینش ہیں، وہ بھی جو آباد ہو گئے وہاں الیکشن میں حصہ لے لیتے ہیں، لینے جا بھی رہے ہیں، چونکہ اب ڈیول نیشنلٹی بھی بن جاتی ہے، تو پھر ہر جگہ بندہ یہ ساری چیزوں میں حصہ لے سکتا ہے۔ تو اس وقت کون کون حصہ لے رہے ہیں پاکستانی نژاد؟
1: جی، یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ میرا نام ایز اے کینڈیڈیٹ ہے، سوشل ڈیموکریٹ، جو
0: آپ کا نام جو ہے پارٹی کی طرف سے آیا ہے؟
1: ہاں جی، پارٹی کی طرف، سوشل ڈیموکریٹ کی طرف سے میرا نام ہے، میں کینڈیڈیٹ ہوں مالمو میں ایز اے کونسلر کے لیے۔ جی، تو یہ انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں کہ خدایا آپ ووٹ دیں اور اس پارٹی کو بھی آپ دیں، اس کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے، لیکن آپ کائنڈلی خدا ووٹ دیں، اور اگر کوئی ایسا بندہ ہو جو اپنا ہو اور اس کو مطلب ہے یہاں کا انٹیگریٹ ہو، اس کو ایجوکیشن ہو اور وہ ینگ بھی ہو، تو میں چاہوں گا کہ ایسے بندے کو فرنٹ پہ لانا چاہیے۔ ایک ہمارے एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए हमारी तरफ से एक, कि भाई ये हमारा एक है और इसको हम ट्रस्ट करते हैं, ताकि वो यानी सबके लिए एक यकजा होकर बात कर सके। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो यूरोप है ये एक डेमोक्रेटिक एक कॉन्टिनेंटल है। इस ये मतलब है बड़े बड़े आजम है, तो ये मतलब है यहाँ पर बहुत मतलब है ये वोट की बहुत ज्यादा अहमियत है। तो ये काइंडली वोट दें, और मैं
0: कामरान,
1: कैंडिडेट
0: आप
1: हूँ
0: वोट
1: माई
0: की बात कर रहे हैं, अगर लोग आपको वोट देना चाहते हैं, आपकी पार्टी को वोट देना चाहते हैं, वो एज ए पार्टी को भी वोट दें और आपको पर्सनली वोट भी दें, इसका क्या तरीकाकार है?
1: इसका ये होता है कि एक तो पार्टी को आप वोट देते हो, तो फिर पार्टी डिसाइड करती है, क्योंकि आपने कोई पर्सनल वोट नहीं दिया उसके नाम पे, आपने क्रॉस नहीं लगाया। लेकिन मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ सार को, कि प्लीज आप पर्सनल वोट मुझे दें, ताकि एक आपका स्पेसिफिक कैंडिडेट फ्रंट पे आए। अगर आप पार्टी को वोट देना चाहते हैं वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे पर्सनल वोट भी देंगे तो वो 2 in 1 हो जाएगा। मतलब मुझे भी वोट आ जाएगा और पार्टी को भी वोट आ जाएगा। तो और जो बहुत से जो डैनिश हैं पाकिस्तानी जो इधर शिफ्ट हो गए हैं, जो यहाँ पर रह रहे हैं मालमो में, वो कम्यून का वोट दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास डैनिश नेशनलिटी होगी या पाकिस्तानी पासपोर्ट होगा। तो वो मतलब है सिर्फ एक, मैं एज ए कम्यून का कैंडिडेट हूँ, सोशल डेमोक्रेट का। और जो मतलब है जो जिनके पास पासपोर्ट होंगे स्वीडिश स्वीडन के, वो आप पार्लियामेंट के लिए वोट दे सकते हैं। लेकिन जो डेनमार्क से यहाँ शिफ्ट हुए हैं वीजे के लिए या जॉब के लिए या उनकी कोई अपनी कोई कोई वो वजूहात हैं, क्योंकि यहाँ कानून है कि आप बिल्कुल एज ए EU सिटीजन या स्कैंडिनेविया सिटीजन, वो बिल्कुल आप बिल्कुल फ्रीडम है कि आप हो सकते हो यहाँ मूव। तो मैं चाहूंगा कि तो आप काइंडली
0: कामरान,
1: यहाँ पर
0: आपको
1: मालमो
0: वोट
1: में
0: जो है
1: वोट
0: वो डेनिश पासपोर्ट वाले भी दे सकते हैं, पार्लियामेंट में भी अगर
1: दें।
0: ड्यूल
1: जी जी
0: नेशनलिटी है, स्वीडिश नेशनलिटी भी है, डेनिश नेशनलिटी भी है, तो पर ये पार्लियामेंट का भी वोट दे सकते हैं वो।
1: नहीं वहाँ जी, लेकिन नहीं, जिनके पास सिर्फ स्वीडिश नेशनलिटी है वो पार्लियामेंट का वोट दे सकते हैं। और जो मुझे जो वोट दे सकते हैं, उनके पास कोई भी पासपोर्ट हो, पाकिस्तानी हो, डैनिश हो, स्वीडिश हो या कोई भी हो, वो मुझे वोट दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 साल यहाँ मालमो में, उन्होंने यहाँ रजिस्ट्रेशन कराई हुई हो, 2 साल स्वीडन में रह गए हो, स्वीडन में 2 साल उनकी यहाँ पर वो रह गए हो, तो वो मुझे बिल्कुल वोट दे सकते हैं। जी रस
0: तो आप सिर्फ जब मतलब जो है कम्यून का इलेक्शन लड़ रहे हैं,
1: जी,
0: इस तरह यहाँ रीजन का होता है और उसके बाद पार्लियामेंट को होता है, आप सिर्फ जो है कम्यून के मालमो कम्यून में इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं।
1: यहाँ पर ऐसे भी होता है कि उसका नाम कम्यून में भी आ सकता है, उसका नाम रीजनल में भी आ सकता है, उसका नाम पार्लियामेंट में भी हो सकता है, ऐसे भी होता है। लेकिन मेरा नाम जो है, क्योंकि मैंने सिर्फ अपने आप को स्पेसिफिक रखा हुआ है कम्यून के लिए। जी रस
0: और आप सोशल डेमोक्रेट के टिकट पर लड़ रहे हैं,
1: जी, सोशल डेमोक्रेट ने मुझे टिकट दिया है और सोशल डेमोक्रेट के ही बिहाफ पे मैं ये मुझे टिकट मिली है। जी रस
0: तो आपके एरिया जहां तक लगता है तो कितने वोट हैं अगर पाकिस्तानी निषाद स्वीडिश के लिए जाएं या खाली पाकिस्तानी निषाद पासपोर्ट के लिए?
1: वो ऐसे होता है कि जो मैं आपको उसका समझा देता हूँ, कि कुलिया समझा देता हूँ, ताकि वो कुलिया को आप हर जगह रख सकते हैं। तो वो मिसाल के तौर पे अगर हमें यहाँ पर एक मिसाल आपको लगा देते हैं कि यहाँ पर आपको वोट मिले 60 60 हजार वोट सोशल डेमोक्रेट को मिल गए, एक मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ, तो उसमें से तो वो पार्टी। लेकिन अगर उस 60 हजार वोट में से आपके 5% वोट एक पर्सनल निकल आए, 5% का वोट यही होता है कि तकरीबन 3 हजार, ठीक है। अगर मुझे 3 हजार वोट मिलते हैं तो मैं बिल्कुल एक कैंडिडेट ले जाऊंगा यहाँ का, जो बिल्कुल फ्रंट पे आ सकते हैं। तो मैं सबको कहूंगा 3,500 एक मार्जिन भी रखना चाहिए, लेकिन जो हमने हिस्ट्री देखी है, तकरीबन यहाँ पर 60 हजार वोट सोशल डेमोक्रेट को आते हैं। जो यहाँ की आबादी है वो तकरीबन यहाँ पर 2.5 के करीब है, लेकिन उसमें बहुत से लोग जो रह रहे हैं, जो बच्चे भी हैं, जो एलिजिबल नहीं है, वोट नहीं दे सकते, जो अंडर 18 है, तो तकरीबन ऑलमोस्ट 60,000 वोट पड़ता है। तो उसका मैंने एक रफ अंदाजा लगाया हुआ है कि 3,000 3,500 अगर मुझे वोट मिले तो मैं इंशाल्लाह एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हूंगा। जी रह सर,
0: आपने क्या कहा, 300? कितने वोट मिले आपको पर्सनली वोट?
1: 3,000 3,500
0: ठीक है, तो चलें कामरान आते हैं कि इधर इल सिंग और के साथ, एक इल सिंग बो आपका स्वीडन का शहर है, तो वहाँ जो नेटो की मीटिंग हुई है उसके बारे में कोई हमारे सामान्य नाज़रीन को इन्फॉर्मेशन है?
1: हाँ जी रा साहब, ये आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये तो पूरा इंटरनेशनल न्यूज हुई भी है कि आपको पता है जो सिचुएशन इस यूरोप में चल रही है, आपको पता है हर जगह एक जंग के हालात हैं। यूरोप में एक बहुत बड़ी जंग चल रही है, उसे यूक्रेन आप कह सकते हो। और आप देखें कि बहुत बड़ी डिफरेंट यहाँ पर सिचुएशन चल रही है। आप देखें कि जंग आपकी इसराइल लिबनान में चल रही है, एक जंग आपकी इसराइल अमेरिका और ईरान में चल रही है, जिसके नतीजे हम भुगत रहे हैं एनर्जी के, पेट्रोल के कॉस्टली जो ये हुई खड़ी है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, कई मुल्क इसमें ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो गए हैं जी। और डिफरेंट मुल्क आपको पता है, वो भी पाकिस्तान और इंडिया की, मतलब है इस वक्त सिचुएशन चल रही है वो बड़ी डिफरेंट चल रही है दुनिया के अंदर। तो ये नेटो जो मीटिंग हुई है, ये हेलसिंबर्ग, जिसको आप हेलसिंबर्ग, हेलसिंगर आपका दूसरी साइड पे है, मेरे ख्याल से 20 मिनट्स लगते हैं शिप पे हेलसिंग
0: आप इसे बॉर्डर
1: जाने
0: ही
1: के लिए
0: कह लें, बल्कि
1: एंकर।
0: अंदर एक दूसरे के जम
1: एग्जैक्टली
0: हुए हुए, बस पानी में आप तैरना चाहते हैं तो तैर कर भी जा सकते हैं।
1: बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक किस्म से एक मीटिंग हुई थी यहाँ पर नेटो की। तो उसमें तकरीबन ये मीटिंग जो हमारी, जो उसमें तकरीबन 32 के करीब जो फॉरेन मिनिस्ट्री जो थे वो उसमें आए हुए थे इस मुल्क में, मतलब है मीटिंग के अंदर, वो 21 से 22 मई में, यानी एक दिन की मीटिंग। तो जो बहुत बड़ी सिक्योरिटी आई हुई थी यहाँ पर, के डिफरेंट शहरों से पुलिस भी गई हुई थी, इन्होंने पूरा कोई ड्रोन भी वहां कोई नहीं मतलब है उड़ा सकता था, वहां पर कैमरे उन्होंने बहुत लगाए हुए थे। बहुत बड़ी मतलब है यहाँ मीटिंग हुई जो उसकी दो तीन, इसमें जो मीटिंग के बारे में मैं आपको पहले थोड़ी सी, वो मीटिंग तो आपको पता कई साल साल पहले, बस सॉरी कोई कई महीने पहले, वो तो टाइम वो शेड्यूल तो होता है, लेकिन आप अगर इस मीटिंग को थोड़ा सा एक एनालाइज करें तो इसमें आप देखें कि ये मीटिंग हुई है आपकी 21 मई को, और एक यानी और 20, 21, 22 मतलब है आप 2 दिन कह सकते हो। लेकिन आप अगर थोड़ा सा देखें कि व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन, वो बहुत जरूरी है एनालाइज करना। आप देखें 19 मई से मैं शुरू करूंगा, उसे जस्ट विद इन 2 डेज बिफोर एक बहुत बड़ी आपको पता है एक्सरसाइज की है, बैटल की वो रशिया ने, और उस रशिया ने उसने अपने जो साइज एकदम निकली, यानी कोई वो स्पेसिफिक, यानी दुनिया मीडिया को नहीं पता था उसके बारे में, उसमें उस रशिया ने तकरीबन 65,000 सोल्जर्स ने वो एक्सरसाइज की, मतलब है वो आई है उन्होंने, मतलब है उसके अंदर एक यानी जिसको कहते हैं डिफरेंट मिसाइल्स, उसमें सुपरसोनिक मिसाइल, और एवन उसने जो एटॉमिक के जो बम जो होते हैं वो लेके जाते हैं मिसाइल, उसका भी उसने वहां पर एक मतलब एक्सरसाइज की है। और वो उसने डिफरेंट तरीके से दिखाया गया है कि ऐसे उन्होंने मिसाइल जमीन से भी उसने मतलब एक्सरसाइज किया है मारकर, उसने हवा से भी एज ए मार के डिसाइड किया, और एवन उसने जो पानी के अंदर से भी उड़ा के उसने मारा, और उसने एवन वो भी मिसाइल दिखाए हैं जो आपके जो सबमरीन होती है, जिनको आप आबदोज उर्दू में कहते हैं, जिसमें ट्रूपेडो जो होता है जो पानी के अंदर से अंदर अंदर जाके जो मारता है, उसकी भी एक्सरसाइज की गई है। तो ये एक्सरसाइज जो आई है वो इससे तकरीबन नेटो की बहुत बड़ी मीटिंग के 1-2 दिन पहले रशिया ने ये कही है, मतलब साइज वो गई है 19 मई से 20 मई को, और 21 से 22 को नेटो की मीटिंग हुई है। क्योंकि इसकी इसके ये एक सिंबल्स होता है कि जो आपको पता है कुछ यानी हफ्ते, पिछले हफ्ते की बात है कि रशिया पे एक डिफरेंट ड्रोन हमले हुए, और वो ड्रोन हमले कहाँ से आए, वो आए तकरीबन जो अकॉर्डिंग टू मीडिया, और वो एक नेटो कंट्री, और वो नेटो कंट्री सिर्फ बताते हैं ऐसे ही, वो नाम नहीं लेते कि कहाँ से आई, वो है पोलैंड, पोलैंड बॉर्डर होता है यूक्रेन का, तो वहां से मोस्टली चीजें जा रही है। और आपने देखा होगा कि पिछले महीने वो कहते थे पोलैंड के मुझे सोल्जर्स चाहिए अमेरिका के, तो अमेरिका 5,000 सोल्जर नहीं भेज रहा था, लेकिन अब आके डिसीजन हुआ है कि अमेरिका ने अपने 5,000 सोल्जर्स पोलैंड में उसने भेज दी है। तो जो मीटिंग्स जो हुई थी उसमें कुछ एजेंडास थे, मतलब एजेंडे उन्होंने रखे हुए थे कि हम क्या हमने करना है, क्या हमारा फ्यूचर प्लान है। और इस मीटिंग की एक बहुत खास जो बात थी इस मीटिंग की, ये आपको पता है स्वीडन जो है वो 2022 में नेटो पे मतलब है उसने ज्वाइन की है, और ये स्वीडन की एज ए नेटो मेंबर पहली दफा मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग में जो इसका होस्ट थे वो था उल्फ क्रिस्टेसन, मतलब एक जो स्वीडन का प्राइम मिनिस्टर थे। और इसमें जो आपको पता मार्क है वो एक जो नेटो का जनरल सेक्रेटरी जो सबसे वो है। और जो एक और बात थी उसमें है मार्को रूबियो, ये है फॉरेन मिनिस्टर है अमेरिका का जी, जो बहुत बड़ा एक अहम शख्स है जो इन्वॉल्व है। आपको बताया कि मिडल ईस्ट के अंदर भी, ईरान के साथ भी, आपको बताइए जो डिफरेंट यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान की हुई थी उसमें भी ये बड़ा इन्वॉल्व था। वो बंदा भी उसने वहां पर मतलब है इसमें पार्टिसिपेंट किया, और 32 तकरीबन नेटो के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर आए हुए थे। तो उन्होंने डिफरेंट चीजों को एनालाइज किया, देखा गया, और एक अहम जो बात थी वो ये थी कि हम यहाँ के जो उसकी जो अपना जो बजट है हमारा, जिसको आप कह सकते हैं बैटल चीज के अंदर, वो हमें इंक्रीज करना चाहिए। ये हमने फिर उन्होंने वो थोड़ा बैंड इसके बारे में कन्वर्सेशन हुई है। फिर ये हुई है कि हमने यूक्रेन की सपोर्ट करनी है, और फिर अंदर आपको पता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी खुश नहीं है नेटो से। वो कह रहा है कि जब मुझे हेल्प की जरूरत थी तो उस वक्त नेटो ने ईरान के ऊपर जो इसराइल और अमेरिका इसराइल का साथ नेटो ने नहीं दिया, इसके बारे में भी वो। और यूरोप थोड़ा सा डर भी रहा है, यानी डर तो नहीं कह सकते आप, इसको कह सकते हैं हेजिटेट का लफ्ज मैं इस्तेमाल करूंगा, वो इस वजह से है कि शायद अमेरिका अपने यहां से वो ना निकलवा ले, अपने जो आर्मी है जो अमेरिका की वो वापस यूरोप से ना निकलवा ले। फिर दूसरी बात है ग्रीनलैंड की आपकी, ये भी एक मतलब है एक बहुत बड़ा बना हुआ है, लेकिन मुझे लगता है जो मैं देख रहा हूँ कि ग्रीनलैंड का भी इतना खास जो है वो डोनाल्ड ट्रंप भी चुप हो गया, और ग्रीनलैंड पे कोई खास इतना एजेंडा भी मतलब है नहीं हो रहा है। एक ये भी एक चीज है। बाकी वहां पर जो आपको बताया हर जो जो वहां पर जो मतलब बात हुई है वो ईरान की वॉर की बात हुई है। आपको बताया हरमोज सुंद जिसको स्वीडिश में कहते हैं हरमोज जो जगह है जो बंद की हुई है ईरान ने, जहां से पूरा आपका गोल्फ के स्टेट्स हैं, ऑयल है, गैस है, वो वहां से नहीं गुजार रहा उनका खाना पीना सब कुछ, उसके बारे में भी उसने। और बकायदा मैं तो कहता हूँ ये ऑनर की

0: एक ट्रस्ट शो कराया है और ये देखा है कि हमें थोड़ा बजट बढ़ाना चाहिए, और अमेरिका ने ये भी कहा है यूरोप को कि आप भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। इसका ये मतलब है कि यूरोप भी अब फोकस करेगा अपनी आर्मी को बिल्ड करने के लिए। अब यूरोप भी डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स हैं जो पहले नहीं इन्वेस्ट करते थे यूरोप, अब वो दोबारा जो डिफेंस के लिए वो अब दोबारा उसकी इंडस्ट्री भी बूम करेगी। जी रैसा,
1: तो कहीं जो है वो डोनाल्ड ट्रंप दोबारा तो नहीं है ग्रीनलैंड की तरफ आ रहे?
0: नहीं, ये जो अभी तो फिलहाल आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो फुल फोकस है वो मिडल ईस्ट हो गया है, और उसमें आपको पता है इन्वॉल्व हो गया है चाइना भी उसमें उसमें है। तो अभी यूक्रेन की वॉर इतनी हुई हुई है तो उसने जो पंगे खुल गए हैं ना उसके साथ वो, और आपको पता पूरा क्राइसिस हो रहा है ये इसका ऑयल का, क्योंकि जब 70s में आपको पता है शाह फैसल का जो क्राइसिस आए थे जो उसने यूरोप का ऑयल बंद किया था, वही पॉलिसी ईरान का रहा है कि ऑयल, वो इससे बड़ा भी क्राइसिस अगर ये अभी कीप कंटिन्यू रहा तो बहुत सी फ्लाइट्स हैं। मैं आपको छोटी सी एक बात कहती हूँ, जो स्वीडन की वाइस प्राइम मिनिस्टर है एबा बुख, उसने ये कहा है कि हमें ये हो सकता है, उसने ये कैटेगोरिकल बात किया है मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, कि जो बंदा अपना सेमेस्टर के लिए दूसरे मुल्क जाए तो छुट्टियां लेके जाए, शायद ये हो सकता है कि हमारे पास शॉर्टेज हो जाए और हवाई जहाज की जो आपकी टिकट है जो रिटर्न वो आपको ना ला सके। तो उसने कहा ये भी अगर इसी तरह हमारा, क्योंकि हमारे पास एक एक लिमिट में रिजर्व ऑयल है जो हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर उसको कोई ये नहीं, ये ईरान अगर इसी तरह वो रहता है स्टबर्न और नहीं बात मानता और जिद पे लगा रहता है और ये हमारा सॉल्व नहीं होता तो कॉन्सिक्वेंस यूरोप में आ सकते हैं। जी रस,
1: कमरान, आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नाराज़ हैं। डोनाल्ड ट्रंप किस पर नाराज़ हैं? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आसिम, जनरल आसिम नीर साहब पर बड़े खुश हैं, पाकिस्तान के जो हैं वज़ीर आज़म उन पर बड़े खुश हैं, ये क्या बात है?
0: पर ये बातें आज तक मैंने भी मुझे भी ये बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं खुद ना एक थोड़ा कंफ्यूज हुआ हुआ हूँ, क्योंकि देखें वाहिद मुल्क है इस वक्त पाकिस्तान, मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान इज माय ओन कंट्री बिकॉज आई एम सेइंग दैट इज नॉट लाइक दैट, लेकिन ये हकीकत है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि एक तो रशिया भी पाकिस्तान वो ट्रस्ट कर रहा है पाकिस्तान पे, वो जी क्या कहते हैं चाइना भी पाकिस्तान पे ट्रस्ट कर रहा है, अमेरिका तो आपको पता है रोजाना वो कहता है माय फेवरेट फील्ड मार्शल और माय प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका इतना बड़ा ट्रस्ट कर रहा है पाकिस्तान पे, और जो ईरान है वो इतना बड़ा ट्रस्ट कर रहा है पाकिस्तान पे, और जो ये है क्या कहते हैं आपका सऊदी अरब, ये खुद इतना ट्रस्ट कर रहा है, इसने तो यहाँ तक के अपनी डिफेंस के लिए आपको पता है पाकिस्तान ने फौज भी भेज दी है, अपना इक्विपमेंट भी भेज दिया है जॉर्डन की तरफ, और जॉर्डन आपको पता है जॉर्डन की बैक साइड पे कौन है, इसराइल बैठा हुआ है वहां पर पाकिस्तान की बेस वो हो गई, वो इतना ट्रस्ट कर रहा है, कतर है वो भी ट्रस्ट कर रहा है, यानी मुझे समझ नहीं आ रही है कि वो ईरान है जिस पे वो मिसाइल मार रहा है, वो ईरान मिसाइल मार रहा है सऊदी अरब पे, और पाकिस्तान ने उस सऊदी अरब से कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, और दोनों बंदे जो एक मतलब है जो अटैक हो रहा है जो अंडर अटैक हो रहा है और जो पाकिस्तान मतलब मजम्मत वो भी करता है कि ईरान ने सऊदी अरब को हिट किया, ये गलत किया, और सऊदी अरब भी उसको कहता है कि आप ऐसे ना करें, तो वो मतलब पाकिस्तान सऊदी अरब को हक में बयान करता है कि ये हम कंडेम करते हैं अटैक ईरान का, और ईरान के साथ जाके उसको कहता है कि भाई हाँ आप बैठे हम आपके साथ हैं, तो ये वाली पॉलिसी अच्छी पॉलिसी है, मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मतलब है व्हाट इज गोइंग ऑन, मैं अभी खुद कंफ्यूज हूँ के मतलब है कैसे, क्योंकि मुझे नहीं कैसे इसको मैं बताऊं, मुझे नहीं समझ आ रही, मतलब है एक बंदा होता है वो किसी
1: कामरान,
0: के
1: आप
0: साथ
1: देखें ना, ये
0: होता
1: जो
0: है।
1: इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है इसके असरात जो हैं ये लोकल बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। आप जिस तरह नेटो की आप बात कर रहे हैं, तो जो लोग लोकल रहते हैं, लोकल जो सोसाइटी होती है, लोकल सोसाइटी पर भी इसके बड़े असरात पड़ते हैं, चूंकि गवर्नमेंट लेवल की बात होती है ये, हालांकि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। लेकिन अगर देखा जाए कि इंडिया जो है बैठा है खामोशी से बैठा है, वो किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान से जंग चाहता है, आप क्या कहेंगे?
0: नहीं मैं तो मुझे तो ये जो नजर आ रहा है जो मेरी अपनी इंडिया जो है वो भी पाकिस्तान पे ट्रस्ट कर रहा है, क्योंकि इंडिया भी चाहता है

0: है कि ये जो है ईरान का चीजें खत्म हो और हमारे मुल्क के अंदर भी ऑयल एंड गैस आनी शुरू हो। ये बहुत बड़ी एक बात है। और मैं आपको एक क्योंकि ये भी पाकिस्तान पे ट्रस्ट कर रहा है, कभी भी इंडिया की तरफ से, चलो
1: क्योंकि
0: ये
1: मोदी जी जो है,
0: कश्मीर
1: मोदी
0: वगैरह
1: जो है
0: तो
1: साहब हैं, जो स्टेट मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो चूंकि सियासी तौर पर जो है बिल्कुल लेट के हैं।
0: जी, मैं बिल्कुल मैं इस पे आता हूँ थोड़ी सी, मैं आपको टच करता चलूं। इंडिया की एक इंडिया भी पाकिस्तान पे ट्रस्ट कर रहा है, ये इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इसकी वजह ये है क्योंकि उसको भी ऑयल एंड गैस, यानी अगर जो मसला ईरान का खत्म होता है, हरमूज जो है सुंडत वो खुलती है, तो उसमें ये तो नहीं है कि पाकिस्तान को फायदा है या अमेरिका को फायदा है, इसमें पूरी दुनिया का फायदा। आप पूरी यानी यूरोपीय यूनियन ने भी बात वो की है, फेवर में की है। मैक्रोन जो है फ्रांस का, उसने जाके कॉल किया है कि भाई ये हम इसके साथ हैं कि आप इसको टॉक पे करें। ईरान वो सॉरी यूके ने साथ दिया कि हम अपनी फौज नहीं भेजते, हम टेबल टॉक पे बिलीव करते हैं। यानी ये बहुत अच्छी ये एक बात। और बाकी जो इंडिया का रह गया है, जो चीजें रह गई हैं, तो आप इस पे बिल्कुल बात करना। आप वेस्ट बंगाल, आपको पता है इंडिया का जो है उसमें इलेक्शन हुआ है, जो बहुत बड़ी बीजेपी जीत गई है, वो भी एक बहुत बड़ी है, अभी तक एक वो है पहेली है कि किस तरह वो हो गया है। मतलब वो भी एक चीज हो गई कि इतनी बड़ी सीटें, कि आपने पिछले 4 साल पहले आपकी 77 सीट्स थी, अभी आपकी तकरीबन सीट्स 190 की बीजेपी ने ले ली है, ये डबल से भी ज्यादा। ये चीज भी अभी तक समझ नहीं आ रही कि इसको इसको आप मुझे रहा सब आप बात करना मोदी पे, उसके इलेक्शन पे, उसकी इलेक्शन कंपेन की, उसकी जो जो जो उसकी चीजें हैं वो किस तरह वो करता है। तो रहा सब आप एक प्रोग्राम रखना इस पे, तो बिल्कुल मैं जो मेरी सोच होंगी, जो मेरी थिंकिंग है, जो मैंने स्टडी किया, तो मैं आपसे
1: तो
0: लाजमी शेयर
1: इंशाल्लाह ज़रूर इस पर
0: करूंगा।
1: प्रोग्राम करेंगे। कमरान, आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी जो डेनिश इंसाद शहरी हैं, ये काफ़ी तादाद में ज़्यादा, जिस तरह स्वीडिश बसते हैं कोपनहेगन में ज़्यादा उनकी तादाद है, इसी तरह जो डेनिश बसते हैं वो उनकी मालमों में ज़्यादा तादाद है। पाकिस्तानी इंसाद जो है स्वीडिश बन गए हैं या डेनिश हैं, उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है और वोट का हक भी रखते हैं, तो आप उनको अपनी ज़बान में या स्वीडिश में आप क्या पैगाम देना चाहते हैं आखिर में?
0: अगर आप कहते हैं मैं उनको स्वीडिश में कहूं, आप ये कह रहे हैं
1: आप दोनों जुबानों में, अपनी जुबान में कहना चाहें, स्वीडिश में कहना, क्योंकि अच्छी खासी
0: मैं,
1: तादाद
0: हाँ जी
1: बसती है जो मालूम
0: जी
1: है।
0: मैं आपसे सारे, अब मैं स्पेशली जो डेनिश पाकिस्तानी हैं उनसे मैं बिल्कुल वो अटेंशन चाहूंगा अभी। और ये जो मेरा मैसेज है ये स्पेशली उन्हीं के, डेनिश पाकिस्तानियों के लिए है कि प्लीज जो आप मालमो में आए हैं, बिल्कुल आपका राइट है, स्कैंडिनेविया में आप बिल्कुल आए, मोस्ट मोस्ट वेलकम है, लेकिन यहाँ पर प्लीज वोट डालें। मैं एज ए कामरान ए सोशल डेमोक्रेट की टिकट पे यहाँ पर कैंडिडेट हूँ, तो प्लीज आप मुझे एक वोट डालें, ताकि और कोई भी आपकी कोई मीटिंग है या मुझसे बात करना चाहते हैं या कोई भी किस्म से मेरे से आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप राजा कपूर साहब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे एक मतलब है, हमारे एक बहुत अच्छे, और मैं मतलब मैं इनको भाई भी कह सकता हूँ, और मैं मेरे इनके साथ बहुत प्यारे, हमारे एक फ्रीडम फाइटर मैं कहूंगा ये वो है, तो इनसे आप रब्ता करें। और किसी भी किस्म का कोई बात है तो मैं एज ए आपके लिए स्टैंड करूंगा, और यहाँ मुझे वोट डालें ताकि मैं इंशाल्लाह अपने आप को मतलब आपकी आवाज को और भी आगे लेके जाऊं। जी रह सर,
1: कवनान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
0: बहुत शुक्रिया रह सर।
1: समय नाज़रीन, ये थे कामरान कुरैशी, जो के जो इलेक्शन हो रहे हैं कम्यून के पार्लियामेंट के रीजन में, तो कम्यून के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। वोट आपका है, आप जिस जहां आपका दिल करता है, जिस पार्टी को आप देना चाहते हैं, जो भी आपको कैंडिडेट पसंद है, लेकिन आपका काम है वोट डालना। ये अगर आपको हक मिला हुआ है तो इस हक को आप इस्तेमाल करें, ये आपका हक है, आपने किस तरह अपने हक को जो है वो इस्तेमाल करना। समय नाज़रीन, हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, कोई बात करना चाहता है, कोई अपनी राय देना चाहता है, हमारा काम इन्फॉर्मेशन देना, जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपके साथ शेयर करते हैं। वोट आपका हक है और आपने वोट किस तरह देना है। समय नाज़रीन, हमारे साथ साथ रहिएगा, अगर टाइम आपको ज़रूरत है तो आपके लिए हमारा टाइम हाजिर है।
2: सामेन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: میرے محبوب وطن تجھ پہ ہو جان اثار۔ سمے ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادار آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 24/5/2026 کا پروگرام ہے، 12:35 ہوا چاہتے ہیں۔ سمے ناظرین، جس طرح ہم نے صبح اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ بہت سارے لوکل پروگرام ہوتے ہیں، سب کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، سب کو ہم لے بھی نہیں سکتے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو لوکل کمیونٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اس پر بھی بات کی جاتی ہے، انٹرنیشنل لیول پہ بھی بات کی جاتی ہے۔ تو سمعین، اس وقت آپ کی آواز کے آپ کے اپنے علی جاوید، جنہیں آپ مختلف حوالوں سے جانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، تو اس وقت کافی دنوں کے بعد، یہ آپ کو پتہ ہے اپنے کام میں بھی مصروف رہتے ہیں، ٹریولنگ ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ٹائم بھی بہت کم ہوتا ہے، جو ٹائم بچتا ہے تو پھر ڈیفینیٹ اپنے گھر کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے۔ علی، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کی اپنی آواز پر۔
1: جی، بہت شکریہ، السلام علیکم، اور تمام سامعین کو بھی میری طرف سے السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام علی، بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں، آپ اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں، کبھی آپ جہاز پہ کدھر جا رہے ہوتے ہیں ساری چیزیں پتہ چلتی رہتی ہیں، لیکن اسی طرح موسم کے ساتھ سیاست بھی تبدیل ہوتی ہے، کام بھی سارے چلتے رہتے ہیں، لیکن جو لوکل کمیونٹی کے پروگرام بھی ہوتے ہیں، تو کل یہ پروگرام ایک بڑا پروگرام ہوا، جو اسے تاریخی پروگرام کہہ سکتے ہیں، اتنے سفرا آئے ہوئے تھے، یہ کریڈٹ جو ہے وہ کمیونٹی کو بھی جاتا ہے، انتظامیہ کو بھی جاتا ہے، اور خاص کر پاکستان امبیسی کو جاتا ہے، شعیب سرور صاحب کو جاتا ہے، ان کی ٹیم کو جاتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے ساری چیزوں کو، کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟
1: جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ویسے تو عید کے حوالے سے جو چاند رات کے پروگرام ہوتے ہیں تو کافی سالوں سے ہو رہے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے شیخ خرم صاحب جو ہیں وہ اس کو کئی سالوں سے کر رہے ہیں، میرے خیال سے 13-14 سالوں سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہمیشہ ہی کرتے ہیں، اور اس کا سہرا یقیناً ان کے سارا کہ انہوں نے اس روایت کو نہ صرف قائم کیا بلکہ برقرار رکھا۔ اور پہلے تو ان کا اپنا شادی ہال تھا، تو وہاں پہ ان کو جگہ کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا تھا، اور بہت بڑے جو ہے وہ وہاں پہ 800,000 لوگ ایک وقت میں اکٹھے ہو جاتے تھے، مگر کیونکہ اب ان کے پاس وہ نہیں ہے اور جگہ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو اب پچھلے 2 دفعہ سے یہ جو ہے البرٹ سونڈ کے جو بڑا ہال ہے وہاں پہ کر رہے ہیں، اس سے پہلے چھوٹے میں بھی ہوتا تھا، تو چھوٹی پہ میں نے جو ہے یہ شیئر کیا تھا شعیب صاحب کے ساتھ بھی، اور امبیسی کے باقی لوگوں کے ساتھ بھی، علی ستار صاحب کے ساتھ بھی، تو وہ بلکہ وہاں پہ آئے بھی، تو پھر ان کو بڑا اچھا لگا، ان کے لیے ایک بڑا پلیزنٹ سا سرپرائز تھا، اور پھر انہوں نے مجھے بھی کہا، اور بعد میں ہم نے بات بھی کی کہ اگلی دفعہ جب کریں تو پھر امبیسی بھی جو ہے وہ تھوڑا سا اپنی کلچرل ایکٹیویٹی کو کیونکہ ہمیشہ پرموٹ کرتی ہے، تو وہ بھی تھوڑا سا اپنا جو بھی ان کی چھوٹی سی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے وہ اس میں ضرور کرنا چاہے گی۔ تو اس میں جو منتظمین ہیں شیخ صاحب، انہوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا، ایکسیپٹ کیا، اور پھر جو ہے وہ بس اسی طرح معاملات ہوئے۔ تو پھر آپ نے کل دیکھا، اور جو لوگ وہاں پہ آئے تھے انہوں نے بھی دیکھا کہ نہ صرف پاکستان امبیسی کا پورا عملہ وہاں پہ موجود تھا، انہوں نے ان انتظامات کو بھی دیکھا، اور اس کے ساتھ تقریباً 15 سے زیادہ امبیسیز کے جو سفیر اور ان کا جو ڈپلومیٹ سٹاف ہے اب وہ وہاں پہ گاہے بگاہے آتے رہے، خاص طور میں جس طرح چائنا کے سفیر بھی آئے، فلپینز کے بھی آئے، اسپین وغیرہ کے، عراق کے، بہت سارے ممالک کے آئے، اور وہ وہاں پہ وہ لوگ آ کے بڑے خوش ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان جو ہے وہ اپنی کلچرل ایکٹیویٹیز کو، اور یہ ہماری کیونکہ ریلیجیس ایک تہوار ہوتا ہے سال میں 2 دفعہ، وہ کس طرح اس کی تیاری کرتے ہیں، ان کے لیے ایک بڑا سرپرائز تھا، بڑا پلیزنٹ سرپرائز تھا، وہ بڑے خوش ہوئے۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ خاص طور پہ انہوں نے وہاں کا جو پاکستان کے کھانوں کا سٹال تھا، بڑے وہ انہوں نے کھانے بڑے بڑے مزے کے کھائے، کلفیاں کھائیں وہاں پہ، اور جو سفیروں کی بیگمات ہیں انہوں نے وہاں پہ مہندی لگوائی، اپنے اپنے پسند کے انہوں نے کپڑے یا اسکارف وغیرہ لیے، اور اچھی بات یہ ہے کہ جہاں تک میری معلومات ہیں کسی نے بھی ان سے پیسے نہیں لیے، تو ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ انہوں نے اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کی، عزت افزائی کی، تو یہ ایک بڑا اچھا تھا۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ میں اس میں کہوں گا کہ شیخ خرم کے ساتھ ساتھ پاکستان امبیسی کا اس میں بہت بڑا جو ہے وہ کردار ہے، کہ انہوں نے ایک لوکل ایونٹ کو، جو پاکستان کا ایک لوکل ایونٹ کافی عرصے سے ہوتا رہا، اس کو اب جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ایکسپوئر دے دیا، جہاں پہ اب इतनी ज्यादा एम्बेसीज के लोग आए हैं, तो वो भी जब जाएंगे डेफिनेटली अपने अपने अपने लोगों में डिस्कस करेंगे, तो वो इस चीज का जरूर रेफरेंस देंगे कि इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो होती हैं। और मैंने तो बल्कि चाइना के सफीर का जब इंटरव्यू किया तो वो उन्होंने कहा कि अगली दफा भी जब होगा तो हम जरूर आएंगे, हमारे लिए एक बड़ी अच्छी बात है। तो मेरा ख्याल है कि ये इससे ना सिर्फ लोगों को जो है वो ईद की शॉपिंग का वो मौका मिल जाता है, बल्कि बहुत सारे लोग आपस में मुख्तलिफ हवालों से मिल भी जाते हैं, बातें भी होती हैं, खाने भी खा लेते हैं, और इस तरह सोशल गैदरिंग भी हो जाती है।
0: चलें अली, ये तो बहुत अच्छे हुआ, लेकिन हमें बड़ी खुशी हुई जो हमारी टीम थी पहली दफ़ा जो सब लोग देख कर हैरान हुए हमें जब तैयब शाह साहब मिले, तो आपने क्या महसूस किया?
1: जी तैयब शाह साहब बड़े अरसे के बाद मुझे तो नजर आए, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर तो अक्सर वो जो है वो हाजिर रहते हैं, मगर इन पर्सन काफी अरसे के बाद मिले। बड़ा अच्छा लगा उनको सेहतमंद देख के, और पूरी आपकी मीडिया की टीम थी और भी बहुत सारे लोग वहां पे थे, जो है
0: सैयद
1: जो
0: तुकी
1: कम्युनिटी
0: हसन
1: के लोग
0: बुखारी
1: थे,
0: शाह
1: अली
0: साहब भी थे।
1: बुखारी साहब भी थे, और काफी लोगों ने अपने अपने हिसाब से जो है वो इसमें पार्टिसिपेशन की। और मीडिया का हमेशा की तरह ही जो है वो बड़ा किरदार है, हम तो अपनी तरफ से कोशिश ही कर सकते हैं कि लोगों को जो है वो इंफॉर्मेशन दें और बताएं, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं, कुछ लोगों को तो पता होता है मगर बहुत सारे हमारे लोग ऐसे ही हैं जो इतने पुराने डेनमार्क में नहीं है या नए आए हैं, जिनका इतना ज्यादा वो नहीं होता, तो वो फिर क्या नाम है जो है इस चीज को मिस करते हैं, अपनी पाकिस्तानी शॉपिंग को मिस करते हैं, तो उन लोगों को एक मालूमात मिल जाती है। तो हमने देखा कि काफी ज्यादा लोग बाद में आए थे।
0: अली, आपने देखा हमारे नौजवान सियासतदान मियां मुनीर साहब भी हमारे साथ रहे, तो उन्होंने भी बड़ा पार्टिसिपेट किया।
1: जी बिल्कुल, वो तो उनकी तो एक खूबी यही है कि वो कभी भी कहीं पे भी पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की कम्युनिटी के हवाले से फंक्शन हो तो वो अपनी तमाम मसरूफियात को छोड़ के, शायद उन्हें थोड़े वक्त के लिए भी आना पड़े तो वो आते हैं। और वो कल भी उन्होंने, मुझे मालूम है उन्होंने उनकी कमिटमेंट थी, उन्होंने जाना था, मगर वो फिर भी आए, उन्होंने अपना हिस्सा डाला और फिर वो बाद में चले गए। और आपने देखा कि उनके हाथ में पाकिस्तानी झंडे भी थे हमेशा की तरह, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है।
0: हमेशा की तरह उन्होंने गाड़ी में रखे होते हैं, इसलिए अदनान अली अमीन का बड़ा रोल था। बड़ी खामोशी से वो काम करते हैं, लेकिन जो बैकबोन है शेख खुर्रम की, वो जो है अदनान अली अमीन है।
1: जी बिल्कुल, ये एक बंदे का तो काम नहीं है, क्योंकि ये तो एक पूरा टीम वर्क होता है, और चाहे कोई छोटा इवेंट हो, आपने घर में किसी का खाना रखना हो, या आपने कोई बड़े पैमाने के ऊपर कोई तकरीब करनी हो, तो ये एक बंदे का काम नहीं है। एक बंदा तो सिर्फ कप्तान हो सकता है, मगर वो कप्तान की टीम के बगैर जो है वो मामलात नहीं चल सकते, तो इसीलिए जो है इसमें उनकी टीम की और मेंबर जो राहिला है वो भी, उन्होंने भी पूरा पार्टिसिपेट किया, वो उनकी उनके अपनी मसरूफियात
0: वो
1: थी
0: भी
1: तो
0: बड़ी
1: कल नहीं आ
0: खामोशी से
1: सकी।
0: काम करती रहीं।
1: हाँ जी, और क्योंकि वो जो है एक दिन पहले तक उनके साथ थी, मगर कल शायद उनकी कोई अपनी कोई कमिटमेंट थी
0: वो
1: फैमिली
0: नॉर्वे
1: की,
0: चली
1: तो
0: गई
1: वो,
0: थी।
1: हाँ जी, तो वो चली गई थी। तो अदरवाइज ये टीम वर्क के बगैर तो ये काम हो ही नहीं सकता, इसमें पूरी जो है वो की अपनी टीम है, अपने लोग हैं, जो शुरू से अरेंज करना, फिर उसका सारे लोगों के स्टॉल लगाने बनाने, बाद में हटाने, फिर सफाई करनी, और हालांकि इसमें इनकी वो कमाई तो नहीं होती, मगर वो लोगों को एक बस एक मौका देते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि लोग आए यहाँ पे इकट्ठे हों और जो है वो इसमें खुशी महसूस करते हैं।
0: आमर शहजाद ने भी जो है, राजा आमर ने भी बड़ा किरदार अदा किया, अपना रोल अदा किया अपने तरीके से।
1: जी बिल्कुल, उनकी एक अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस है, वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर लिखते रहते हैं, तो उन्होंने भी अपने हिसाब से जो है इस इवेंट को पूरा कवर किया, और जहां जहां तक उनकी आवाज पहुंची है वो उन्होंने वहां पे उसको पहुंचाया, और लोगों को और अपने अपने चाहने वालों को, अपने फॉलो करने वालों को बताया कि किस तरह जो है वो डेनमार्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी एक्टिव है।
0: और बच्चों ने बड़ा रोल अदा किया, हमारे आपके बच्चे जो हैं वो सारे अपने अपने तरीके से काम करते रहे, माहौल को देखते रहे, एंजॉय करते रहे, और बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया।
1: जी बिल्कुल, एंजॉय किया। और कल तो क्योंकि ये भी था कि मौसम भी गर्म जरूर था मगर बाद में अच्छा हो गया था। और बच्चों के लिए जो है, वैसे मेरी शेख साहब से भी बात हुई थी, वो बच्चों के लिए एक्टिविटी भी रखना चाह रहे थे, कोई जिस तरह ये जंप करने वाले वो जंपिंग जैक्स होते हैं, और मगर क्योंकि उनके पास वक्त भी नहीं था और शायद इतनी वहां पे बाहर उस हिसाब से जगह भी ना हो, तो वो बच्चों के लिए और भी करना चाह रहे थे, मगर फिर भी बच्चों काफी तादाद में हमने देखा, इवन जो सफीर वगैरह भी आए हुए थे वो भी अपने बच्चों को लेके आए हुए थे, तो बच्चों
0: अली,
1: के लिए
0: एक
1: भी बड़ी
0: बात थी,
1: बात है
0: वहाँ
1: क्योंकि
0: ख्वातीन और बच्चों की तादाद जो है वो अक्सरियत में नज़र आ रहे थे, मर्द हज़रात भी बहुत ज़्यादा थे, बुज़ुर्ग भी बहुत ज़्यादा थी तो थे, लेकिन यह कि ख्वातीन की तादाद ज़्यादा थी, आप क्या कहेंगे?
1: ये बेसिकली, तो ये जो इस तरह के बाजार लगते हैं इसमें खवातीन का ही ज्यादा किरदार होता है, या खवातीन की ही ज्यादा आप कह लें कि नुमाइंदगी होती है, क्योंकि ईद पे सजना संवरना, अच्छे कपड़े पहनना, या ये खवातीन हमारी पाकिस्तान की जो है या बरसगीर की खवातीन है, वो इनको जरूर उस हिसाब से ज्यादा माहौल बनाती है, ज्यादा उनको वो अपना होता है, मेहंदी लगवानी, चूड़ियां, ज्वेलरी। मर्दों का तो बस ये है कि वो अपना उन्होंने जो भी होता है ईद वाले दिन का सूट होता है, कपड़े होते हैं, वो पहन के उनकी तैयारी बस इतनी होती है, मगर खवातीन क्योंकि उन्होंने सारी चीजों को देखना होता है, तो इसीलिए उनकी नुमाइंदगी जो है वो शॉपिंग में बहुत ज्यादा होती है।
0: अली, जब आप लाइव कवर कर रहे थे तो आपने देखा कि जो साबका मेयर थे उन्होंने सफीर मोहतरम के साथ मिलकर जो है वो इफ्तिताह किया गया, जिसे कहते हैं रिबन काटा गया, फीता काटा गया, तो उसके बाद जो मौजूदा मेयर हैं वो भी बाद में तशरीफ़ लाए और मेंबर्स भी तशरीफ़ लाए, जो पाकिस्तानी या दूसरे ममालिक के स्टाफ का अमला था, सफरा का अमला था, उन्होंने मैंने नहीं देखा, पहली दफ़ा देखा कि वो इस तरह दौड़ दौड़ के आगे पीछे घूम रहे थे।
1: जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा था। और कुछ लोगों को तो मैं भी जानता हूँ, कुछ सफीरों को, कि जब उनको हमारी एम्बेसी या मुंतजमीन ने कुछ थोड़ी और रिस्पेक्ट देने की कोशिश इस तरह की कि वो उनको प्रोटोकॉल दें कि उनको थोड़ा घुमाए पड़े, तो वो कह रहे थे कि नहीं, हम खुद जो है ना वो घूमना चाहते हैं ताकि हम रिजर्व ना रहे, जिस तरह बांग्लादेश के सफीर थे या इस तरह। तो वो ये अच्छी बात है कि वो लोगों में घुल मिल गए थे, और वो इस चीज का वो एक कहते हैं ना कि अपना एप्रिसिएशन, या इस चीज का वो अपना प्रोटोकॉल नहीं लेना चाह रहे थे कि हम एज ए सफीर जो है यहाँ पे शॉपिंग करेंगे या घूमेंगे, वो आजादाना माहौल में सारे घूम रहे थे और आजादाना तरीके से जो है वो शॉपिंग कर रहे थे, खा पी रहे थे, ताकि अगर किसी से वो कुछ चीज खरीदे भी तो लोग उनसे पैसे भी ले और मुफ्त भी ना दे, मगर फिर भी बहुत सारे लोग जो है जो जिनके साथ हम गए थे किसी ने उनसे पैसे भी नहीं लिए, और वो बड़ा खुश हुए हर तरह की शॉपिंग से, हर तरह के माहौल से। आपने देखा चाइनीज सफीर की जो मिसेज हैं, उन्होंने तो आते साथ ही जो है वो मेहंदी, उन्होंने कहा कि उन्होंने मेहंदी लगवानी, और भी बहुत सारी खवातीन ने वहां पे मेहंदी लगवाई, मगर वो तो बड़ी पुरजोश थी, उन्होंने दोनों हाथों पे शायद मेहंदी लगवाई थी।
0: अली, आते हैं थोड़ी सी लोकल और बात कर लेते हैं। अली, आप देखें कि अब कम्यून के इलेक्शन हो चुके, पार्लियामेंट के हो चुके, अब हुकूमत जो है दोबारा बनने जा रही है, आजकल में ये चूंकि नेटो की मीटिंग थी इसका इंतज़ार किया जा रहा है, तो उसके बाद अब हुकूमत जो है बन जाएगी, कम्यून का भी सारे मामला हाल जो हो चुके हैं, लेकिन हमें पाकिस्तानी नसाद अपनी सोशल जो लोकल पार्टीज़ हैं, सियासी पार्टियाँ, उसमें तो ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, या जो अब डेनमार्क के इलेक्शन है, हमारे बच्चे हैं, जो आने वाला मुस्तकबिल है, इन्हें चाहिए कि अब राघव वो डैनिश पार्टियों की तरफ जाएँ, इनके मेम्बर्स बने, इन पार्टियों में जाएँ, अगर मेम्बर्स नहीं भी बनते तो फिर भी अपनी पार्टियों में ये मेम्बर बन जाए, तो ताकि आने वाले अंदर जो इलेक्शन है कम्यून के, पार्लियामेंट के तो किसी वक्त भी हो सकते हैं, तो यही मुस्तकबिल है, अब यही तरीकाकार होना चाहिए। डेफिनेट अपने मुल्क से, अपने प्यारे वतन से मोहब्बत हर किसी को होती है और होनी भी चाहिए, फितरती बात है, आप क्या कहेंगे?
1: जी अल्लाह करे यहाँ पे अब हुकूमत बन ही जाए, काफी टाइम हो गया अभी तक हुकूमत नहीं बनी, और इस वजह से जो है वो शायद जो है काफी सारे लोगों में या काफी सारी सियासी जमातों में बड़ी एक बेचैनी सी पाई जाती है कि दोबारा इलेक्शन ना हो जाए, या अगर ये हुकूमत बनेगी तो वो कितनी मजबूत होगी, उसकी कितनी सुनी जाएगी, पार्लियामेंट कितनी मजबूत होगी। तो ये तो खैर अभी जो है देखें क्या बनता है, मगर पाकिस्तानी जो हमारे सियासतदान है, पाकिस्तानी सियासत से दिलचस्पी रखने वाले, या पाकिस्तानी लोग जो यहाँ की सियासत से दिलचस्पी रखते हैं, मैं जाती तौर पे तो मुझे बड़ी मायूसी है, क्योंकि हमने इस दफा भी इलेक्शन में हमारी वो कारकर्दगी पाकिस्तानी सियासतदानों की नहीं रही जो होनी चाहिए थी, और सबसे ज्यादा मायूसी तो पाकिस्तानियों से है मुझे ذاتی طور پہ कि पाकिस्तानियों ने वोट डाले ही नहीं, अगर डाले हैं तो वो किधर गए। और अब देखें कि कितने पाकिस्तानी यहाँ पे खड़े हुए, मेरे ख्याल से किसी को 2000 से ज्यादा वोट पड़े ही नहीं, और इतनी ज्यादा एफर्ट उम्मीदवारों ने की, उनके सपोर्टरों ने की, मगर जब वोट देने की बारी आई तो सारे जो हैं वो बस या सोए रहे या अपने कामों पे मसरूफ रहे या उन्होंने मुकम्मल तौर के ऊपर इग्नोर किया। तो ये जो है एक बड़ा खतरे की बात है, बड़ी अलार्मिंग बात है कि जब आप वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेते फिर आपके ऊपर जो है वो पाबंदियां लगें, आपको आपके ऊपर सख्तियां हो, आपकी बात ना सुने, फिर आपका गिला शिकवा करना बनता भी नहीं है क्योंकि आप इस प्रोसेस का हिस्सा बन ही नहीं रहे और जो बनना चाह रहे हैं आप उनको सपोर्ट भी नहीं कर रहे। तो ये बड़ा खतरे की बात है। अभी भी लोगों के पास 4 साल का वक्त है, तकरीबन 3.5 4 साल का वक्त है कमून के इलेक्शनों के लिए और पार्लियामेंट के इलेक्शनों के लिए, कि अभी से तैयारी करें, अभी से अपनी जमातों के साथ सिंसियर हो जाएं, पाकिस्तानी सियासत को छोड़ दें। पाकिस्तानी सियासत का यहाँ पे कोई जो है वो ना वजूद है ना उनका कोई यहाँ पे मुस्तकबिल है, तो अपनी डेनिश सियासत की तरफ आए अगर सियासत करनी है, और अपनी जमात को, अपने वोटरों को, अपनी यहाँ पे जो उनकी मौजूदगी है उसको इतना मजबूत करें कि अगले इलेक्शन आए तो एक भरपूर तरीके से वो उसमें पार्टिसिपेट करें, कामयाबी हासिल करें। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि लोग क्यों अभी भी यहाँ पे बरादरियों में जब वोटिंग की बात होती है बटे होते हैं, क्यों पाकिस्तानी सियासत के जो उसमें बटे होते हैं कि अगर कोई बंदा जिसका पॉलिटिकल रुझान किसी दूसरी सियासी पार्टी की तरफ है पाकिस्तानी, और वो यहाँ पे वोट ही नहीं देते क्योंकि उसका पाकिस्तानी सियासत से रुझान है, तो ये इतनी खतरनाक बात है। बहरहाल बहुत सारे चीजें जो है वो जैसा हम यही सुनते थे कि जब किसी को कोई उस्ताद नहीं सिखा सकता, कोई किताब नहीं सिखा सकती, तो फिर वक्त उनका सबसे बेहतरीन उस्ताद बन जाता है। तो अब शायद हम उस नहज पे पहुंच चुके हैं कि जब हमें इन चीजों का एहसास होगा कि अब बहुत देर हो चुकी है, पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात हो जाएंगी क्योंकि अब हमारे यहाँ पे इंडियंस इतनी ज्यादा तादाद में आ गए हैं। आप लोगों ने पिछले 50 60 सालों से इस माशरे में इतनी मेहनत की, उस मेहनत का आपने इतना बड़ा दरख्त लगा भी दिया, मगर उससे जब फल तोड़ने की बारी आई तो अगर वो फल और को तोड़ के ले जाए तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अब आप यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में फॉरनर्स हैं, आपकी कोई जो है वो पॉजिटिव तरीके से कोई नुमाइंदगी नहीं है सियासत में। जो काउंसलर्स हैं वो उन्होंने इलेक्शन लड़ना होता है तो वो आखिरी 3 4 5 महीनों में अपना सर निकालते हैं कि हम इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं। इसी तरह जो पार्लियामेंट के हैं शायद इक्का दुक्का के अलावा जो है वो सारे ही 4 6 महीने पहले जो है वो बाहर निकलते हैं कि अब हमने इलेक्शन लड़ना है। ना तो इस तरह इलेक्शन की तैयारी होती है, ना इस तरह आप वोटर सपोर्टर को मुतमईन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो हमारे लोकल पॉलिटिशियंस हैं इनका भी जो रुझान है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ ही होता है कि हमने इनसे वोट लेने हैं। बहुत थोड़े लोग हैं, या अगर सारे भी करते हैं तो बहुत थोड़ी एफर्ट करते हैं कि डेंचों को या दूसरे लोगों को कन्विंस कर सकें। सिर्फ वही कन्विंस करते हैं या वही करते हैं जो बड़ी पार्टियों में होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनको वोट मिले या ना मिले मगर पार्टी के मेंबर होते हुए शायद इनको वोट पड़ जाए। तो ये सारी चीजें सोचनी चाहिए। अभी 3 3.5 4 साल हैं, अगर अभी से तैयारी करेंगे तो कामयाबी मिलेगी, वरना चाहे 10 लोग खड़े हों 50 लोग खड़े हों तो उससे जो है इन लोगों को कोई फायदा नहीं होना, ना इनको होना है, ना इनकी सियासत को होना है, और ना ही यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनको कोई फायदा होना है।
0: अली 1400 साल पहले हमें आजाद कर दिया गया, ये जो होते थे और उसे क्या कहते हैं, ये खरीदे जाते थे, गुलाम खरीदे जाते थे, उनकी मंडियां लगती थी, उनके भाव ताव होते थे, फिर उस तरह खरीदा जाता था, मालकों से खरीद लेते थे गुलामों को। तो अली यूरोप में रहते हुए हमने देखा है कि लोग गुलामी की तरफ जो है वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, गुलामी कबूल करते हैं, आज़ादी की तरफ, इनको आज़ादी का रास्ता बताया जाए तो इनको तंगी आती है।
1: जी यही तो बात है कि जब आप ज़हनी तौर के ऊपर आप यहाँ पे किसी भी पाकिस्तानी को देख ले, आपको सारे पाकिस्तान की सियासत में चैंपियन नजर आएंगे। सारों को पता होगा कि कौन बेहतर लीडर है, कौन बुरा लीडर है, कौन जो है वो अवाम के लिए सोचता है, कौन अवाम के है। हर बंदे की अपनी अपनी राय होगी, और 10 घंटे आप उनसे बात कर ले, वो 9.5 घंटे आपको पाकिस्तानी सियासत में खुद को चैंपियन साबित करने में लगे रहेंगे, आपको साबित करके दिखाएंगे। मगर जब यहाँ पे बात आएगी तो मेरे जैसे लोग होंगे जिनको कोई अलफ बे भी नहीं पता होगी यहाँ की सियासत की, कोई पता ही नहीं होगा कि सियासत में क्या चल रहा है, पता ही नहीं होगा कि आज क्या अहम मीटिंग हुई। तो ये एक बड़ी खतरनाक बात है। अब आप इस माशरे में आ गए हैं, आप 50-60 सालों से यहाँ पे पाकिस्तानियों की यहाँ पे नुमाइंदगी है, हमने हर तरह की फील्ड में हमने कामयाबियां हासिल की हैं। सियासतदान तो चले हैं मगर शायद इतने कामयाब नहीं है। यहाँ पे बिजनेसमैन है, यहाँ पे साइंसदान है, यहाँ पे जो हमारे जजेस हैं, हर तरह के लोग बैठे हैं और हर तरह की कामयाबी हासिल कर रहे हैं क्योंकि वो इंडिविजुअल है। मगर ये सियासत जो है ये एक कलेक्टिव एक चीज होती है, इसमें आपको लोगों के साथ मिलना जुलना होता है, लोगों के साथ उठना बैठना होता है, लोगों के साथ लोगों को अपना पैगाम देना होता है, लोगों की जेहन साजी करनी होती है। मगर अब हमारे लोगों की जेहन साजी जो है वही आपने जो बात की कि चाहे हम वहां से यहाँ पे आके आजाद हो गए हैं मगर हमारा जेहन अभी भी पाकिस्तानी सियासत की गुलामी कर रहा है और वहां पे हम फंसे हुए हैं, और अगर हमने यहाँ पे कामयाब होना है तो फिर हमें वहां से बाहर निकलना पड़ेगा। अभी मैं 2 दिन पहले लंदन में काम के सिलसिले में गया हुआ था, तो वहां पे भी आप देख लें कि मैंने वहां पे भी देखा कि हर दुकान के बाहर पोस्टर्स लगे हुए हैं, पाकिस्तानी सियासत के लगे हुए हैं। उन लोगों को क्या लगे कि आपने पोस्टर लगाए हुए हैं, उन लोगों को क्या लगे क्या वहां पे बसों के ऊपर बैनरों के ऊपर लिख के लगाए, उनका उससे ना वो इस चीज को केयर करते हैं ना वो उस चीज के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मगर क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारा जो है वो कोई यहाँ से तस्वीर बनाएगा, वीडियो बनाएगा, हम सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो जाएंगे, और वहां पे जो है वो आए रोज जो है वो जिसे कहते हैं कि जुमा बाजार लगाया होता है, कभी कहीं धरना हो रहा है, कभी कहीं इजमा हो रहा है, इससे वहां की सियासत को या पाकिस्तान से बाहर की सियासत को कोई फायदा नहीं हो रहा, पाकिस्तान को उल्टा नुकसान ही हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ये हमें देखनी पड़ेंगी, और जब तक इन चीजों से नहीं हटेंगे ये चीजें जो है वो कभी भी पाकिस्तान को आगे लेके नहीं जाएंगी। तो सियासतदानों को सोचना चाहिए कि वो जिस जगह पे रह रहे हैं सबसे पहले वहां की सियासत करें, अगर वहां पे आप कामयाब होते हैं तो फिर आप आगे आपकी कोई आवाज सुनी जाएगी, वरना आप जो है वो एक हजूम ही रहेंगे और हजूम की जो है वो सुनी नहीं जाती, बल्कि हजूम को बाहर वाले लोग जो है वो ही आके कंट्रोल कर सकते हैं।
0: अली, आपने देखा, आप आए, मेहनत की और माशाल्लाह अच्छा अपना जॉब कर रहे हैं और अच्छी जॉब पे आप हैं, दुनिया भी घूमते रहते हैं, यहाँ की चीज़ों को भी देख रहे हैं। लेकिन अभी नौजवान आ रहे हैं, जिस तरह अदनान अमीन अली है वो अगली दफ़ा इलेक्शन में आ रहा है, जोहर ने अभी से ऐलान कर दिया है, ज़ीशान ने अभी से ऐलान कर दिया है, सिकंदर ने ऐलान कर दिया है, कासम ने ऐलान कर दिया है, और भी जो लोग हैं वो ऐलान कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत नहीं है कि लोग वक्त से पहले अब ऐलान कर रहे हैं?
1: जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है, लोग वक्त से पहले ऐलान कर रहे हैं।
0: और ये
1: और
0: नौजवान है, ये पढ़े लिखे हैं।
1: हाँ जी, और इनको सबसे ज्यादा जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे इनमें जो आपने नाम लिए हैं, 2-3 नाम तो जो है कि काफी अरसे से लोगों में उठते बैठते रहते हैं, सियासत अपनी पार्लियामेंट की कर रहे हैं, करते रहते हैं, कर चुके
0: कासिम है,
1: हैं।
0: मेहनती है,
1: हाँ जी,
0: दौड़ता है,
1: हाँ
0: लेकिन
1: जी,
0: इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा एक दिन दौड़ में।
1: हाँ जी, इंशाल्लाह जी। असल बात यही है कि जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि जब यहाँ पे यहाँ की सियासत में भी बरादरी आ जाती है तो फिर वो नुकसान पहुंचाती है। अगर तो जो यहाँ का नौजवान है, जो यहाँ के लोग हैं, जिसमें हम हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं कि वोट हमारा हक है या हमें देना चाहिए या हमें अपने शऊर के मुताबिक वोट देना चाहिए, मगर मुझे समझ नहीं आती कि वो शऊर जो है वो जब यहाँ पे वोट देना होता है तो वहां पे फिर ये बरादरी की जेल में क्यों कैद हो जाता है, फिर क्यों नहीं आप वोट क्यों नहीं डालते, या आप क्यों बरादरी के ऊपर आके वोट डालते हैं। अगर आपने वोट डालना है फिर जिसको जिसको आपका दिल करता है वोट डाले, मगर कम से कम वोट तो डाले। अब जब आपकी 100 में से एवरेज 30-35 लोग वोट डाल रहे हैं तो फिर आप बेचारे जिसने इतना पैसा लगाया, इतनी मेहनत की, जो इलेक्शन लड़ रहा है, आपने उससे झूठे वादे भी किए, तो उसको फिर आप उसके साथ तो आप धोखा ही कर रहे हैं ना। या तो आप उसे पहले दिन ही कह दें कि जी हम यहाँ पे आपके पास दावत खाने जरूर आए हैं, मगर हम आपको वोट नहीं देंगे, या हम किसी को भी वोट नहीं देंगे, तो वो आपसे उम्मीद ही ना रखे। मगर आप, क्योंकि यहाँ का वोटर, यहाँ का जो उम्मीदवार है, उसे पता है कि उसने अगर 2,200 वोट ले लिए या इसके आगे पीछे, तो उसका पार्लियामेंट में जाने का चांस बन सकता है। तो वो 2,200 की कैलकुलेशन उसने की होती है, मगर वो बाद में बेचारों को पता चलता है कि वो झूठी कैलकुलेशन थी, झूठे वादे थे। तो क्योंकि इतनी बड़ी है यहाँ पे आबादी नहीं है, लोग थोड़े वोटों से भी बन जाते हैं, पार्टी के अपने वोट भी होते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, जब हमें सिर्फ जिसे कहते हैं कि लाल झंडी दिखा देते हैं इलेक्शन वाले दिन, वोट डालते डूलते कोई नहीं है, और बातें जो हैं वो हम वो
0: और
1: ऐसी करते हैं
0: सबको
1: कि
0: वोट
1: हम,
0: देते हैं, मैं आपको भी
1: हाँ
0: दूंगा,
1: जी
0: आपको भी दूंगा।
1: हाँ जी, वही बात के झंडा ऊपर एक पार्टी का लगाया होता है, वादा नीचे 10 पार्टियों के साथ किया होता है। तो ये जो है, ये मुनाफ़कत जो है, ये सियासी मुनाफ़कत ना सिर्फ हमारे
0: तो
1: उम्मीदवारों
0: फिर
1: को,
0: शाकर साहब ठीक कहते हैं, ये कल्ट्स हैं।
1: जी बिल्कुल, ये मैंने वही कहा कि जब तक आपकी पॉलिटिकल ग्रूमिंग उस तरीके से नहीं होगी, जब तक आप अपनी जहनी वो जिसे कहते हैं ना गुलामी से नहीं निकलेंगे, आजाद तरीके से नहीं सोचेंगे और पाकिस्तानी सियासत को खैरबाद नहीं कहेंगे, खास तौर पे थोड़े अरसे के लिए पाकिस्तानी सियासत को खैरबाद कह दें, जब यहाँ पे इलेक्शन हो रहे होते हैं, उससे पहले या उसके बाद आप जो मर्जी करें, आपका अपना राइट है, मगर जब यहाँ की इलेक्शन में अगर आप पाकिस्तानी सियासत को ले आते हैं, तो वो नुकसान पहुंचाती है। और अभी आप देखें कि मैं कल परसों भी पढ़ रहा था कि सिकंदर सदीक को जो पाकिस्तान की हुकूमत ने निशाने इम्तियाज मेरे ख्याल से दिया, तमगा इम्तियाज दिया है, तो उसके ऊपर भी यहाँ के मीडिया के ऊपर कितनी जो है वो बातें हो रही हैं, अम्बेसडर को लेके बातें हो रही हैं। हालांकि सिकंदर ने हमेशा जो है वो पाकिस्तान के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से, गैर मुल्कियों के हवाले से सरों की आवाज बना है। उसने कभी ये नहीं कहा कि फलां पीटीआई क्या, फलां नून लीग क्या, फलां पीपल पार्टी क्या, फलां जमात इस्लामी क्या, वो सरों के लिए आवाज उठाता है। मगर जब उसको वोट देने की बारी आती है, तो उसको जो है वो एक खास किस्म की सियासी जमात इसलिए वोट नहीं देती क्योंकि सिकंदर के या उसके वालिद के जो है वो जो है वो नून लीग से कुर्बत थी। तो ये देखें, अब ये जब वो ये बात करता है या वो ये काम करता है, उसने कभी इस तरह की तफरीक नहीं की, मगर जब आप वोट सिर्फ एक बंदे को इस वजह से नहीं डाल रहे क्योंकि पाकिस्तान में इसकी सियासी नजरियात कुछ और है, तो हम इसको वोट नहीं डालेंगे, वो सिर्फ सिकंदर का नुकसान नहीं कर रहे होते, वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, वो जिस शाख के ऊपर बैठे हैं उसी को ही काट रहे होते हैं। और उसका नतीजा क्या निकलता है कि ना एक उम्मीदवार वो पार्लियामेंट में जाता है, ना उसका मुखालिफ जाता है, तो सारे के सारे जो है वो रेस से बाहर हो जाते हैं। और उसका फायदा जो है वो अल्टीमेटली जो डेनिश पॉलिटिशियंस हैं, जिनको आप कहते हैं कि आपके हक में नहीं कर रहे और हम ये उम्मीदवार हमारे हक में जो हमने खड़े किए थे, वो दूसरे वाले जीत जाते हैं और जो आपके लिए मेहनत कर रहे होते हैं वो बाहर हो जाते हैं।
0: अली, आपने देखा इस वक्त जो काफ़ी अरसा से हम तो आपस में बात करते रहते थे, लाइव बात करते थे, पार्किंग की बात साला साल से हम कर रहे हैं, इस मसले को अब जो है कम्यून में बड़ी शद्दोमद से उठाया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो हुकूमत भी देखती है, कम्यून भी देखती है, और जो ताकत होती है ये जो है कम्यून के मेंबर होते हैं, असल ताकत तो ये होते हैं।
1: जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और कमून हमारे लोगों को यहाँ पे, शायद बहुत ज्यादा लोगों को ये नहीं पता कि आपके बहुत सारे मामलात जो हैं, जो लोकल किस्म के मसाइल हैं, वो कमून से हल होते हैं, और बहुत सारे मामलात हैं जो पार्लियामेंट में जाके हल होते हैं। तो हम जो है पार्लियामेंट के उम्मीदवारों से कमून की मसाइल की बातें करते हैं, और जो कमून के मसाइल होते हैं और कमून के लोगों से हम पार्लियामेंट की बातें करते हैं। अब जिस तरह आपने ये बात की कि पार्किंग के मामलात हो गए, बसों के स्टॉप या आपके बोर्डिंग है या इस तरह की चीजें, ये कमून में होती हैं। और जब तक आपका कोई कमून में प्रॉपर नुमाइंदगी नहीं होगी, तो उस वक्त तक आपके मामलात ना तो पता होंगे ना हल होंगे। और जो हमारे कमून के उम्मीदवार हैं या जो कमून के हमारे मेंबर हैं, उन लोगों को भी चाहिए कि वो गाहे बगाहे जो हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू कम से कम अपने लोगों को, अपने वोटरों को बता दिया करें कि कमून आपके लिए क्या क्या कर सकती है। जिस तरह बहुत सारे यहाँ पे आप देखें कि बच्चों के मामलात होते हैं, नौजवान यंग वालदैन होते हैं, उनको इतना पता नहीं होता, मगर वो कभी ना कभी किसी वजह से उनको मुश्किलात या मसाइल पड़ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि कहाँ पे जाना है, क्या करना है। तो कुछ कुछ जिम्मेदारी जो है वो अगर हमारे उम्मीदवार या मेंबरान भी ले लें, वो गाहे बगाहे बताते रहे कि एक कमून आपके लिए क्या कर सकती है, या अगर आपको कोई मसला हो आपके अपने इलाके के हवाले से, अपने घर के हवाले से, अपने लोकल एरिया के हवाले से, तो आप कमून में किस जगह पे कहाँ पे रब्ता कर सकते हैं, आपको सेहत के हवाले से मामलात हो, आपको डॉक्टर के हवाले से मामलात हो, तो आपने कैसे करना है। क्योंकि जो तो लोग पुराने हैं जो इस सिस्टम में है, शायद उनको इस चीज की मालूमात है, मगर जो लोग पिछले 5, 10, 12, 15 सालों से आए हैं, जिनका इतना भी इन लोगों से वास्ता नहीं पड़ा अस्पतालों से, सेहत के हवाले से, कमून में या स्कूलों के हवाले से, वो लोग जो हैं जब उनकी बारी आती है तो उनको पता ही नहीं होता क्या करना है। तो ये मेरे ख्याल से ये चीजें जो है वो एक मुश्तरका तरीके से हैं, इन लोगों को खुद भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, लोगों को भी खुद इन लोगों को अप्रोच करना चाहिए कि हमें थोड़ा सा इस सिलसिले में गाइड करें, तभी जो है ये हमारे उम्मीदवार या हमारे मेंबरान बेहतर बेहतर तरीके से काम भी कर सकते हैं और लोगों के काम भी आ सकते हैं।
0: अली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे सामान्य नाज़रीन के साथ शेयर किया, आपने ताज़ा तरीन मालूमात दी, प्रोग्राम अच्छे पेश किए, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम की तरफ फिर दोबारा जाएंगे।
1: जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।
0: समन नाज़रीन, ये थे आपके अपने अली जावेद, आपकी आवाज़ से बात कर रहे थे। समन, जब मीडिया बात करता है तो सब के लिए बात करता है, तो यहाँ एक ऐसा तबका है जो चाहता है कि इनके दरमियान जो है वो दरार पैदा की जाए, दीवार खड़ी की जाए, तो ये कभी हो नहीं सकता। अपनी सोच को जो है वो तब्दील करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कोई अच्छा काम कर रहा हो तो कोई इंसान हो तो उसकी तारीफ ना करे। समन नाज़रीन हमारे साथ साथ रहिएगा।
2: सामेन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: और वैसे कि अपने काम होते हैं जो मुल्क से मुल्क हो या को ना हो, तो मैं समझता हूँ कि
1: डॉक्टर साहब,
0: देखो
1: आपने
0: इससे
1: देखा
0: पहले
1: कि
0: जो
1: चाइना के एम्बेसडर आए हुए थे और बड़े गुलमुल गए, सब स्टॉल पर गए, इसी तरह इंडोनेशिया के थे, बांग्लादेश के थे, दूसरे स्पेन के थे, अपना फिलिपाइन के, सारे ममालिक जो आए हुए थे और बड़े खुश थे और इतनी खुशी से आगे पीछे घूम रहे थे, बच्चे भी वो अपने साथ लाए थे। लेकिन जो प्लस पॉइंट था कि आपके जो सबका मेयर थे और जब रिबन काटा गया तो वो सफीरे मोहतरम के साथ खड़े थे।
0: अच्छा देखो राज साहब, यही है ना, अगर आप किसी से रब्ता करोगे, कनेक्ट में रहोगे राज साहब, तो आप हमसे भी कोई कनेक्ट करेगा ना। अगर मैं करूंगा ही नहीं किसी के साथ, ठीक है ना, मैं अगर मिक्सर लफ्स अगर मैं अपने अगर मगरूर में या मैं अपनी जगह को जो मैं वो ये हूँ रहूंगा, तो राज साहब यहाँ पे यूरोप में अंदर किसी को किसी क्या परवाह राज साहब। यहाँ पे जो एक बार जी करेगा मेरा उसको 10 बार जी करे। जब आप थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे, वो लोग हैं एज ए पाकिस्तानी, ठीक है जी, वो हर बंदे को एक नहीं 300% ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। तो रिस्पेक्ट लेने के लिए राज साहब आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, कोई रब्ता करने के लिए आपको वाम के अंदर लोगों के अंदर होंगे तो तभी आपको मिलेगी ना। तो अच्छी बात है राज साहब, मैं तो खुशायन बात है और इस तरह होना भी चाहिए। और राज साहब इसमें सबसे बड़ा है, ये जो कुछ हो रहा है उसमें आपका बहुत बड़ा किरदार है ना। देखें राज साहब, ये पाकिस्तान वैसे ही पासपोर्ट का चक्कर था, आज जो मर्जी कोई कहा है, ठीक है ना राज साहब, आज 10-12 साल पहले मैं पता मुझे इस चीज का इलम है कि आपने खुद मुझे कहा था कि राय साहब ये काम हमने करना है, तो मस्जिदों में चलते हैं, ये करते हैं, इतने इंतजात करने हैं, आप फिक्रमंद थे, किया है राय साहब, आप लोगों ने बड़ी खिदमत की है लोगों के लिए। अब आप लोग लड़ रहे हैं कि यहाँ पे वो नादरा का जो सिस्टम है जिस तरह पूरे यूरोप में वो आ जाए, तो राय साहब देखे आप लोग एफर्ट करते
1: राय साहब, वो
0: हैं।
1: भी जल्दी आने वाला, जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी।
0: देखे राज साहब, देखें आप लोग काम एफर्ट करते हैं, आप लोग को कौम के लिए काम कर रहे हैं ना, हमें उन अच्छा जो दो अच्छाइयां ना, हमें वो 200% जो है ना वो उनमें लेके आना चाहिए कि वो जो चीजें जो काम आप लोगों ने किए, जो एफर्ट किया, मेहनत की है, मशक्कत की है, वो कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। ये कहते ना जी, जब काम हो जाए तो वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे डनमार्क ये है जी, वो जो काम करवाने वाला मायूम जी, ये पी जब चल जाएगा राज साहब, आज मुझसे देख लेना, अल्लाह करे चल जाए इंशाल्लाह, उम्मीद तो बड़ी है 1-2 महीने तक चल जाएगा ना। यहाँ से मैंने थोड़ी सी
1: राय
0: खबर
1: साहब,
0: राज साहब जो
1: सबसे बड़ी
0: मुझे
1: बात है
0: पता
1: इत्तफाक होनी
0: चला है।
1: चाहिए। आप देखिए, किसी को पता है आप कहीं मिल रहे हैं, कहीं कोशिश कर रहे हैं, इन चीज़ों की तरफ तो हम लगे रहते हैं। कहाँ जहाँ जहाँ किसी की अप्रोच होती है,
0: देखे
1: काम लोगों को होना
0: राज
1: चाहिए।
0: साहब, देखे देखे अगर कम्युनिटी को फायदा होगा, हमारी बेटियों को फायदा होगा, हमारी माओ को फायदा होगा, हमारे बुजुर्गों को फायदा होगा, जो पेंशनर हैं, जो मरीज है, जो बीमार हैं, अगर उनको राज साहब फायदा होगा, तो देखे इसमें क्या है, किसी का माँ बाप हो, किसी का बुजुर्ग हो, वो मेरा बुजुर्ग है। हमारा काम है कि जो हम इंसानियत पैदा कर सब तो कर रहे हैं, तो माशाल्लाह सब आपका सरफेस नाम आता है, इसलिए नहीं मैं कह रहा कि किसी को ये हो जाए कि अपना राजा गफूर अफजल साहब जो है वो मेरे खानदान से है, ये मेरे, ऐसी बात नहीं है। मैं रसब, मेरी तबीयत सब लोगों को पता है, मैं तो अल्लाह के सिवा किसी के ना, और ना मैं किसी की टीसी करता हूँ, और ना मुझे करने की जरूरत है, ठीक है, और ना किसी से कोई ऐसा भेजा। अल्लाह ने जान दी हुई है, अल्लाह ने रिजक दिया हुआ है, उसी का शुक्र अदा करते हैं। तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं, अगर कोई बंदा तारीफ के काबिल है राज साहब, तो उसे तारीफ करनी चाहिए और वो डिजर्व करता है, ठीक है राज साहब। और किसी के मैंने आपसे आज तक कसम
1: नहीं
0: दे
1: राय
0: रहे
1: साहब,
0: कोई
1: आप
0: सी
1: काम
0: चीज
1: से
0: का
1: आपको
0: हो
1: होता है,
0: कुछ
1: गर्ज
0: लिया,
1: होता है, काम होना
0: ठीक
1: चाहिए
0: ठीक है
1: किसी
0: ना।
1: तरीके से,
0: लेकिन
1: कम्युनिटी
0: लेकिन
1: को
0: राज साहब
1: फायदा
0: देखिए,
1: हो।
0: मैं हाँ देखें, अगर ये काम हो जाएंगे उसे राजा गफूर को या राजा साजू को, तो फायदा नहीं होगा, पूरी कम्युनिटी को होगा। अगर वो अदारा जो है काम वो आ जाता है, और जो मुश्किल हमारी है अगर यहाँ पे हो जाए, तो राज साहब ठीक है, इसके लिए तो 40-50 हजार जो पाकिस्तानी वहां पर है उसे सबको फायदा होगा ना। बेशक एक बंदा एफर्ट कर रहा है, लेकिन मैं समझू, अगर आप मिसाल में दे रहा हूँ, ये कोई बंदा मिसअंडरस्टैंड ना करे, अगर आप एफर्ट कर रहे हैं राज साहब, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको अप्रिशिएट करूँ, आपके साथ चलूँ, आपके खिलाफ ना चलूँ। मैं ये कोशिश ना करूँ कि राज साहब ये काम कर रहे हैं कि तो ये ना हो कि उनका नाम आ जाए मैं पीछे, नहीं, जो काम कर रहा है यार उसको।
1: राय साहब, आप छुट्टियां गुजार के वापस आए तो इंशाल्लाह आए, एक बड़ा प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, आपका इंतज़ार कर
0: चलो
1: रहे हैं।
0: चले राज साहब, बहुत खुशी है, बिल्कुल जनाब, हम जान से माल से जिस तरह कहेंगे राज साहब, हम पेशाना पेशाना खड़े हैं, कोई भी काम हो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए हो, अच्छा काम हो, जिससे राज साहब कम्युनिटी को फायदा पहुंचे, जिससे डनमार्क को फायदा पहुंचे, जिसमें डनमार्क का कोई नुकसान ना हो, तो राज साहब हम पेशाना पेशाना आपके खड़े हैं।
1: राय साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम
0: राज
1: हमारे साथ
0: साहब
1: शेयर किया।
0: बहुत शुक्रिया, राज साहब आपने मुझे याद किया, बहुत मेहरबानी, अल्लाह।
1: सामान नाज़रीन, ये थे राजा सादत किजुम, जो कि कश्मीर सोसाइटी के या डेनमार्क में सदर हैं। تو ظاہر ہے ڈیوٹیاں ہوتی ہیں, کام بتائے ہوتے ہیں جو کمیونٹی کے کام ہوتے ہیں کرتے ہیں. سامعین ناظرین, اپنے ملک کے لیے, اپنے ساتھیوں کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا کوئی اتنا

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान। सामने नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। 24/5/2026 का प्रोग्राम है, 2:17 हुआ चाहते हैं। तो समझ, ये एक इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम होता है, छुट्टी का दिन होता है तो साथ में गपशप की शक्ल में होता है, जो हफ्ते में बातें होती हैं उस पर भी हम बात की करते हैं। तो समझ नाज़रीन, आज कुछ सियासत पर बात नहीं हुई, जो हुकूमत बनने जा रही है इस पर बात नहीं हुई, तो लोगों ने हमें फ़ोन किया कि आज इस पर जो है वो नई हुकूमत बनने जा रही है, इस पर आप बात नहीं कर रहे। तो आपने कहा हमने बात करनी है, चूँकि आपको पता है कि हमारे थिंक टैंक जो है वह छुट्टी का दिन होता है, बच्चे आ जाते हैं, पोतियाँ पोते आ जाते हैं, दादी दादा के पास आ जाते हैं, नानी नाना के पास आ जाते हैं, तो इसे सारा छुट्टी वाले दिन आपको, आप उन लोगों के मशकूर हुआ करें जो छुट्टी वाले दिन टाइम निकाल कर आपको अपना टाइम देते हैं, अपना टाइम आपके साथ शेयर करते हैं। इस चीज़ को भी आप अप्रिशिएट किया करें। तनकीद करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, किसी के ख़िलाफ़ बोलना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई अच्छी बात है, अच्छी बात शेयर किया करें। हर वक्त हमने आपस में लड़ाइयों की बात करनी है, एक दूसरे के साथ नफ़रत की बात करनी। अल्लाह ने हर इंसान को खूबियाँ दी होती हैं, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास थोड़ी हैं। ये ना कि अल्लाह ने किसी को खूबी नहीं दी, हर आदमी के पास अपने अपने तर्ज की खूबी होती है। जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जो ज़हनी तौर पर भी मसाइल हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जो औलादों की परेशानियाँ अल्लाह ताला सब की परेशानियाँ जो है वो दूर करे। सब नाज़रीन, ये हमारे सब के मसाइल होते हैं, किसी बंदे का मसला मसाइल नहीं होता कि किसी की तारीफ होगी तो उसका मसला नहीं, सब के मसले मसाइल होते हैं। और जब तक हम इत्तेफाक़ और प्यार और मोहब्बत की बात नहीं करेंगे, हमारे मसाइल कभी भी हल नहीं होगी। लोग हमको डिवाइड करके रखेंगे, अलग-अलग चीज़ों के साथ खेलेंगे, हर आदमी के साथ अपने अपने तरीके से गेम डालेंगे, अपने अपने तरीके से की गेम डालेंगे। जब तक आप इत्तेफाक नहीं करेंगे, आपके अंदर कोई दरार पैदा नहीं कर सकेगा, कोई कल्ट्स आपके अंदर पैदा नहीं कर सकेगा। अगर कल्ट्स की अक्सरियत होगी तो आप आपस में डिवाइड रहेंगे। सामने नाज़रीन, इस वक्त हमारे थिंक टैंक सैयद तौकीर हसन बुखारी शाह साहब हमारे साथ हैं। शाह साहब, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा गफूर साहब, आपको, आपकी टीम को, आपके लिसन नाजरीन को, सबको सलाम अलैकुम। और आने वाली ईद उल अज़हा जो है, जिसको बचपन में हम लोग बोटी ईद कहते थे, वो सबको मुबारक हो। अल्लाह ताला जो हमारे बीमार साथी हैं उनको सेहत कामला ता फरमाए, और जो हमारे साथी पूरे साल हमसे जुदा हो गए हैं, जो इससे पहले जुदा है, अल्लाह ताला उनके उन पे अपनी रहमत करे और उनके मकाम जो है उनको, उनकी कब्र को जो है एक आला मकाम अता कर दे, ताकि वो जन्नतुल फरदौस की हवाएं ले सके। ये हमारी दुआ है, क्योंकि जब आप मोमिनीन के लिए दुआ करते हैं, जो आप के साथी हो या ना हो, आप उनके लिए दुआ करते हैं, तो अल्लाह ताला कहता है कि फरमाता है अल्लाह ताला कि मैं खुश होता हूँ कि मेरे बंदे जो हैं वो दूसरों के लिए कितनी चाहत रखते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों को सिखलाएं कि इस मौका पर अगर आपका कोई मुसलमान भाई जिससे आपकी ना चाहती है, तो उसके लिए भी दुआ को हो कि अल्लाह ताला इस कुर्बानी का मकसद ही यह है, ये जो कुर्बानी आ रही है इसका ये मकसद नहीं कि हम शोर शाह करें कि जी मैंने इतने बकरे दे दिए, इतने बैल दे दिए, इतने पैसे खर्च कर दिए, नहीं। इसका मकसद यही है कि हमें कुर्बानी देनी है कि अगर हमें किसी से नाराजगी हुई है, किसी से हमें जुदाई हुई है, किसी से हम मिले नहीं, तो उससे एक दफा मोहब्बत का इजहार कर ले। अगले पे है कि वो आपको माफ करता या नहीं करता, लेकिन आप अपने ऊपर जो है हकूकुल अरबाद की पकड़, उसमें आपको अफजल होना चाहिए। आपको माफी मांग लेना, दुनिया में माफी मांग लेना, ये बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसका दर्स दिया है कि माफी मांगने वाला बहुत बड़ा इंसान है, अल्लाह ताला उसको फौरन माफ करता है। जी राजा साहब,
1: निशा साहब, आप हमेशा ये नसीहत करते रहते हैं, आप, मुजीब साहब और भी दूसरे लोग जो है मसले मसाइल लोगों के, ना आपका कोई मसला मसाइल है, ना मुजीब साहब का है, ना कोई हमारा मसला मसाइल है। हम तो कम्युनिटी के लोग हैं, कम्युनिटी की बात करते हैं। और आप देख रहे हैं, साल साल आप इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, मौसम की बात करते हैं, बीमारियों की बात करते हैं।

और मेरे दो तीन मिनिस्ट्री मुझे मिल जाए, और वो तो आगे ही इस सदा पे है। तो ये अब पीडीएम की गवर्नमेंट जो है ये बनने जा रही है, और इसकी हमारी वजीर आजम जो है मेजर फेडरिकसन, वो हर हाल में जो है वो इस हुकूमत की सरबराह बनने जा रही है, और इसमें बहुत जल्द लोगों को ये गवर्नमेंट बनती हुई नजर आएगी। लेकिन हैरानगी इस बात में है कि हम लोग अपने मुल्क की सियासी पार्टियों में अख्तलाफ राय रखते हैं, लेकिन यहाँ आप देखें कि एसएफ और इलीज लिस्टन और दूसरी जो अल्टरनेटिव पार्टी है या रेडिकल वेंसा है, इन्होंने किस चीज पे वोट लिए, और दूसरी तरफ सारी पार्टी जो थी उन्होंने किस चीज पे वोट लिए, और अब आकर वो सारे सियासत में अपने मुल्क को चलाने के लिए उन्होंने एक गिरा बांध लिया और कहा कि जी कि हम रेड और ब्लू ब्लॉक की जो वेंसा पॉलिसी है उसको साथ लेके तो हम कट्ठे चलेंगे। वो ब्लू ब्लॉक में से तो आपको पता है कि लार्ज लोगों की मॉडरेट जो पार्टी है वो आ रही है, और इसके साथ रेडिकल वेंसा जो है वो दोनों तरफ विकेट के दोनों तरफ खेलती है। वो है तो ब्लू ब्लॉक की पार्टी, लेकिन वो सोशल डेमोक्रेट वाला रेड ब्लॉक में भी वो खेल जाती है हुकूमत के लिए। तो अब ये देखें कि ये कौन कौन सी वजहें, अब इनका सबकी बैठक हाँ में होगी है, सिर्फ ये है कि ये वजहें आप कौन कौन सी ले रहे हैं, इन वजहों पे ये दो तीन दिन काम होगा। कौन सी पार्टी जो है वो कौन सी वजारत लेना चाहती है, कौन सी जो है इनकी स्ट्रुक पार्टी होगी, जो मसलन उनके मंशूर जो है जो वो पार्टी ने इनके साथ जो हुक्मरान पार्टी है पीडीएम इसके साथ क्या किस किस वादे पे उन्होंने इसको ज्वाइन किया, तो वो वादे जो है वो सोशल डेमोक्रेट ने हाँ कर लिया, और उसके साथ जो गवर्नमेंट में आएंगे लोग जिनके वजीर बनेंगे वो पार्टियां जो है वो भी साइन करेंगी। तो इंशाल्लाह ये ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन का खेल है, और लोगों पर से ये चीज गुजर जाएगी, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मसला हमारे पास दो मसले हैं। एक है हमारा इंटीरियर मसला जिसके अंदर यहाँ पे गुर्बत जो है वो इंतहा को पहुंच चुकी है। जिंदगी में आज तक 56 साल के अंदर मैंने कभी 17 करोड़ 20 रुपए का मैंने पेट्रोल नहीं देखा था, अब 17 करोड़ 20 रुपए का पेट्रोल और डीजल जो है वो 18 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो ये जो डीजल होता था ये कभी 1 करोड़ में मिलता था डेनमार्क में 70s में, तो अब आप ये न कहें कि ये बढ़ रहा है, बल्कि यह है कि इसके अंदर सियासतदानों ने जो बाहर के प्रॉब्लम्स को देखते रहे हैं, दूसरे ममालिक की प्रॉब्लम्स को देखते रहे हैं, खासकर खसूसी तौर पे हमारी कम्यूनों से पैसे लेके तो 149 मिलियार्ड करोड़ जो था इन्होंने यूक्रेन को दिया, अपने असले दिए, हर चीज दी, उससे हमारी इकोनॉमिकली जो हमारा इकोनॉमिकली हब था वो खत्म हो गया। अब कम्यूनों के पास इतने पैसे नहीं कि वो बाहर जाके तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो सफाई मुलकी रखे। आप देखें कि बाहर जगह पे इतना घास इतना भड़क चुका है, पास जो इलाके हैं उनकी सफाई के लिए इतनी तवज्जो नहीं दे रही, क्योंकि इनके पास कम्यूनों के पास पैसा नहीं है, और पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि इन्होंने जो अपने टैक्स पेयर्स हैं वो तो गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, और फिर टैक्स पेयर्स का पैसा जो है वो कम्यूनों को वापस आता है। तो हमारे जो काउंसलर्स हैं या हमारे जो बंदे जो चुने गए हैं ये उनका काम है कि वो अपनी अपनी कम्यूनों को ऊपर आवाज उठाएं और लोगों के लिए सहूलत मैसर करें। आप ये देखें कि किसी की पेंशन नहीं बढ़ी, 2 साल हो गए, प्राइसेस अप गई हैं, लेकिन इनके बिजली की कीमत बहुत बढ़ गई है, बिजली महंगी हो गई है और आगे जाके होने वाली है, लेकिन इसके ऊपर हुकूमत की तवज्जो नहीं। लेकिन अब क्योंकि एसएफ और इनिशिएशन और अल्टरनेटिव और रेडिकल वेंसा ने ये कहा है कि हम इन चीजों पर तवज्जो देंगे, और देखते हैं कि ये जो नई गवर्नमेंट आती है क्या ये सर्दियां शुरू होने से पहले इस चीज पे काबू पा लेगी या नहीं पा लेगी, क्या ये दोबारा इलेक्शन की तरफ भागेंगे
या इस टूटी फूटी पीडीएम की गवर्नमेंट जो है, अभी टूटी फूटी तो नहीं रही, इनकी सीटें जो है ये तकरीबन 99 100 के करीब।

0: की सीटें हो गई हैं और ये बड़ी आसानी से, क्योंकि 84 तो ऑलरेडी रेड ब्लॉक के पास थी और 14 सीटें जो हैं ये इनको अपना मिल गई है इसकी तरफ से, लास्ट लुके की मॉडरेट की तरफ से। तो ये अब हमने देखना है कि ये गवर्नमेंट असूली तौर पे क्या करती है। तो राजा साहब ये तो सियासत है, और सबसे बड़ी मुझे खुशी ये हुई है कि मेरे छोटे भाई मुजीब कुरैशी साहब ने बड़ा अच्छा फैसला किया है, और बड़े दिल गुर्दे से उन्होंने ये बात किया कि उन्होंने SF को ज्वाइन कर लिया, और ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ा अच्छा शगुन है। क्योंकि एक तो वो खुद सियासी एक पाकिस्तानी पार्टी के सदर है, दूसरा उनके बच्चे यहाँ पे हैं और सारा कुछ, और वो जानते हैं कि अगर इस एज में मैंने अपने बच्चों के लिए किसी पार्टी को ज्वाइन करके और उसमें एक अपना अपना असर रसूख पैदा ना किया, तो फिर मेरे बाने बान और दूसरों की जो फार्मसी है वो इस पार्टी में इस मुल्क के अंदर जो है उनका मुस्तकबिल इतना अच्छा नहीं होगा। तो मैं उनको बहुत खुशी से मुबारकबाद देता हूँ, बहुत अच्छा उन्होंने फैसला किया है। SF जो है वो इस वक्त श्रीलैंड के अंदर मजबूत तरीन पार्टी है, और हो सकता है कि आगे से जाके ये यूलैंड के अंदर भी ये अपने कदम जमा लें, और ये पार्टी जो है इनका मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। तो मैं अपने दिल से उनको मुबारकबाद देता हूँ। जी राजीव साहब,
1: शाह साहब, आप चूंकि जमहूरी आदमी हैं, आप जमहूरियत की कदर करते हैं, तो मुजीब साहब को बात छुपाते नहीं हैं, पब्लिक के आदमी हैं, चूंकि वो पब्लिक में बात करते हैं। तो शाह साहब, आपने हुकूमत का जिक्र किया, तो हुकूमत मेरे ख्याल है अब इतने अरसे के बाद इनको दोबारा वजारतें मिलेंगी, कुछ नए लोग वजारतों में आ जाएंगे, लाल लूके साहब भी किसी बड़ी अच्छी पोस्टों पर भी जाएंगे, वजारत भी मिलेगी, तो मेरे ख्याल है अब इलेक्शन जो है वक्त पर ही होंगे, अब ये किसी किस्म का पंगा नहीं लेंगे, जो कुछ शरारतें करनी थी, सियासी बातें कर रहा हूँ, वो बातें अब तय हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता।
0: जी। इन्होंने जो गेम प्ले की है कि जो जो बातें करते थे उनको इन्होंने बैठा दिया बाकायदा पार्लियामेंट के स्पीकर, नायब स्पीकर, जो इनके 3-4 नायब स्पीकर होते हैं उनकी पोजीशनों पे उनको बैठा दिया। मसला मसला ये है कि क्या ये पार्टी जो है ये तवज्जो देगी, क्या मेजर फेडरसन जो है वो ये साल पूरा एज ए वजीर आजम बैठी रहेगी, या वो इससे पहले ये देखे कि मेरा मुस्तकबिल जो है वो EU के अंदर है, जहां पे इस वक्त UK जो है, इंग्लैंड जो छोड़ चुका था वो बड़ी तेजी के साथ वापस आने की पूरी तमन्ना नहीं बल्कि पूरी वो कुछ उसके मसाइल हल भी हो गए हैं, और कुछ वो परमानेंट मेंबरशिप लेने के लिए दोबारा उसने जो पर खुला रहे हैं, तो उनकी जो शरायत है उसके ऊपर वो गामजान है, उसकी बातचीत हो रही है। तो हो सकता है कि एंड ऑफ दिस ईयर या नेक्स्ट ईयर जो है, जिस तरह के हालात जा रहे हैं, जिस तरह के ग्रीन लैंड के हालात हैं इस वक्त, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि हमने पूरा ग्रीन लैंड ओवरटेक कर लिया, लेकिन हमारी गवर्नमेंट यह कह रही है कि उसने हाफ ऑफ ग्रीन लैंड को हमने उसको इजाजत दी है, लेकिन ये क्या मसले किस वक्त सामने आएंगे, कब मंजरे आम पे आएंगे, ये सियासी चालें कब खत्म होगी और किस तरीके से इसका असर क्या पड़ता है नई आने वाली गवर्नमेंट पे, ये गवर्नमेंट को देखना होगा। लेकिन जो हमारे हमारे लोग हैं, हम लोग हैं, मैं आगे अली की भी बात आपके रेडियो पे सुन रहा था, मुजीब कुरैशी साहब की भी बातें सुन रहा था, तो बड़ी अच्छी इन्होंने कहा है, और ये हम आपके रेडियो पे अमूमन आप मुझसे पूछते रहते हैं, तो मैं यंगस्टर्स को यही कहूंगा कि आप आगे आए, सिर्फ पुरानी बातें हम इसलिए करते हैं कि आपको ये बताएं कि अगर जो आइन के खिलाफ कानून बनते हैं वो, अगर उसके ऊपर आप प्रोटेस्ट करते हैं, उसके ऊपर आप जाते हैं, तो वो आप आसानी के साथ उनको डिमोलिश करा सकते हैं, उनको वापस कर सकते हैं। ये हमारे आइन की खूबी है, क्योंकि डनमार्क का आइन जो है ये रिटन आइन है, इसके ऊपर बेशुमार मसाले हैं, बेशुमार ऐसे लॉ फोर्स रहे थे और फोर्स रहे थी जो पेश की गई थी पार्लियामेंट में, जिनको खत्म कर दिया गया वक्त से पहले, और जो लागू हुई उनको भी खत्म कर दिया गया। यानी कि आप सबसे पहले ये देखें कि जो हमारे सियासतदान ये कहते हैं कि जी कानून खत्म नहीं होते, देखें यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ के जो हाईएस्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जिसको हम कहते हैं, उसने उबर को बैन किया था कि ये हमारे मुल्क में नहीं आ सकती, और हमारा जो कल्चरल, हमारी जो कल्चर की अपनी टैक्सेस है जो हम हमारी अरसा दराज से 100 साल के करीब इस मुल्क के अंदर चल रही है, वही चलेंगी, वही कानून हम रखेंगे, उसको हम थोड़ा सा मॉडराइट कर सकते हैं, लेकिन हम उसी को लेके चलेंगे। लेकिन हुआ क्या कि एक जिस दिन ये अदालत से ये फैसला आया, उसके दूसरे दिन ही उबर का जो डायरेक्टर था उसको मिनिस्ट्री में, ट्रैफिक मिनिस्ट्री में उसको जॉब मिल गई और वो डायरेक्टर बन गया। और उसके बाद उसने क्या किया कि वही उबर का कानून, बिल्कुल वही तौर तरीका, वही चीज लगाई, और फिर अखबारों में आना शुरू हो गया। और ये रैंडम चीज है मीडिया के अंदर कि उबर ने कहा कि हम 2030 से पहले पहले इस मुल्क में दोबारा कदम जमा लेंगे। तो उसके साथ ड्राइवर आज यहाँ पे जो कंपनी है वो चलती रही, फिर दूसरी चीजें जो है उबर की तरह चलती रही, और वो उबर का कानून ऐसा आया कि हमारे लोगों को मौका मिला कि हम लोग जाके इसके ऊपर प्रोटेस्ट करें, जब हमें प्रोटेस्ट का राइट था राजा साहब, उस वक्त हमने प्रोटेस्ट नहीं किया। तो फिर अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने उबर उबर का राज का नाव काबू का कानून लागू कर दिया। इससे ये है कि आप एक किस्म के वो जैसे एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी तरह आप एक आर्टिफिशियल वॉरमैन के हैसियत से वॉरमैन ही कर रहे हैं। आप असल में वॉरमैन नहीं, आपको जब भी आपका सेंट्रल चाहे आपको खत्म कर सकता है, आपकी वॉरमैन ही खत्म कर सकता है। आप अनपढ़ है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा 20-25 हजार करोड़ है तो आप यहाँ डरबा के अंदर बड़ा इजीली, आपको ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि आपको 3 साल यहाँ रहते हो गए या 4 साल, सिर्फ आपको एक एड्रेस एक हफ्ता भी पुराना हो तो आप यहाँ पे फर्म खोल के अपनी टैक्सी सर्च के बना सकते हैं। और ये कानून जो है ये एक मजाक है, इसके ऊपर हमने बार बार बात की और लोगों ने समझा कि हम लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये हम यंगस्टर को समझाना चाहते थे। हम आज भी लोगों को ये कहना चाहते हैं, आज भी लोगों को बताना चाहते हैं कि देखे डेनिश लोग जो है ये राशिस्ट नहीं है, हम खुद राशिस्ट है, क्योंकि हम किसी की बात को सुनना पसंद नहीं करते, हम खुद अपने आप को दूसरों से अफसल समझते हैं, हम ये समझते हैं कि हम हमारे से अच्छा बंदा कोई नहीं, और यही गलतफहमी है जिसकी वजह से इंटरग्रेशन के अंदर जो है वो जो है वो रखना पड़ा। इंट्रोग्रेशन के 4 पिलर होते हैं। पहला पिलर जो होता है वो होता है कि आपको जस्टिस मिलनी चाहिए, उसका फकदान है इस मुल्क के अंदर। दूसरी चीज है कम्युनिकेशन, और ये दोनों पहले जो पिलर्स हैं ये इसके ऊपर हमारी गिरफ्त नहीं है। हम लोगों से कम्युनिकेशन नहीं करते, हम लोगों से इंफॉर्मेशन नहीं लेते, हम लोगों के साथ जाके बात नहीं करते। कल आपने देखा कि कितना अच्छा मेला था यहाँ एल्बर्ट स्टोन के अंदर, बहुत सारे एम्बेसडर्स आए, 16-17 एम्बेसडर्स यहाँ पे आए, उनके पूरी टीमें आई, आपने उनसे बातें की है, हम सब वहां पे मौजूद थे, उन्होंने बकायदा मेहंदी हाथों पे लगवाई, बहुत कुछ उन्होंने किया। और ये और डेनिश जो पुराना एम्बेसडर था हमारा, सॉरी बॉम्बे था एल्बर्ट स्टोन का, वो भी सीन, और उसके अलावा जो इस वक्त के जो कंजर्वेटिव का है उसने भी ये तासरात दिए, उसने कहा कि इस तरह की यहाँ पे होने चाहिए, बहुत ज्यादा होने चाहिए, और यहाँ पे हमारी कम्युनिटी को, यानी उसका मकसद ये था कि डेनिश कम्युनिटी को भी इन्वाइट होना चाहिए, वो भी आए। और ये मैं आपको बता दूं, मुझे यह याद नहीं कि आज या कल एल्बर्ट स्टोन के अंदर या नेक्स्ट वीक, मेरा ख्याल में ये नेक्स्ट वीक है, अगर अदनान इसको या कोई और सुन रहा तो वो इसको करेक्ट करेगा, एक फूड फेस्टिवल चल रहा है इसके अंदर एल्बर्ट स्टोन सेंटर के अंदर, और वहां पे मुख्तलिफ किस्म के फूड स्टॉल वगैरह चलेंगे। ये तो ये बड़ी अच्छी चीज है, हमारे लोगों को भी चाहिए कि सस्ता खाना बनाकर लाए, सस्ती चीजें लगाए, ताकि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा हमारे कल्चर को पसंद करें, कोशिश ये करें कि अपने कल्चर के जो कपड़े हैं वो उसको बनाएं। और राजा साहब मैं इस पे बहुत हुआ और मुझे काफी लोगों ने यह कहा है कि यहाँ पे एक जो डेनिश और पाकिस्तान कल्चर सोसाइटी बड़ी होनी चाहिए पूरे मुल्क के अंदर जो ये चीज राज करे, तो मेरा ख्याल में कि वो
1: शाह साहब आपकी बातें दुरुस्त हैं, क्योंकि आप जमहूरी बंदे हैं ना, जमहूरी बातें करते हैं। शाह साहब सबसे पहले जो है ना इत्तेफाक होना चाहिए, यहाँ जब पर्सनैलिटी क्लैश शुरू हो जाते हैं, बंदा एक दूसरे को मानता नहीं है, बंदा अपनी अपनी हदों में रहना चाहता है, अपनी सरहदों के सियासी सरहदों के अंदर रहना चाहता है, तो शाह साहब फिर इत्तेफाक नहीं होता। जिस तरह आप देखें ना, आप बात करते हैं पीडीएम की, आज हुकूमत ने आपस में इत्तेफाक कर लिया तब वजारतें मिलेंगी ना, जब तक आपस में ये सब लोग इत्तेफाक नहीं करते तब तक काम चलता नहीं। आप देखें कभी शाह साहब आपने देखी है डेमोंस्ट्रेशन के गैर मुल्की अपने हकूक के लिए बाहर निकले हों?
0: इन्होंने इनको पता ही नहीं, इनको इनको इनके पास इतना टाइम नहीं है, और अगर ये निकलते हैं तो ये डेमोंस्ट्रेशन करते हैं। मुझे इसमें दो राय नहीं है, मेरी हमदर्दी है, बल्कि मेरा दिल दुखता है जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, जो कुछ गजा में हो रहा है, जो कुछ दूसरे मुसलमान ममालकों में या दुनिया के दूसरे ममालकों में जो जहाँ जंगे लड़ी जा रही है, इंसानियत का कत्ल जो है, ये मुझे मुझे दुख देता है और बहुत ज्यादा दुख देता है। लेकिन मसला ये है कि क्या आज तक कोई ऐसी डेमोंस्ट्रेशन हुई है कि जिसके अंदर हमने ये कोशिश की हो कि हमें इंटरग्रेशन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका हल क्या है, या हम लोगों ने खुद कोई ऐसी मीटिंग्स कॉल की है कि हम उसके ऊपर बैठ के मुकर्रों की बात सुनी जाए। हमारे लोगों की, आज भी एक बच्चा मुझसे बात कर रहा था, वो पूछ रहा था, तो मैंने उसको कहा बेटा देखो जब हम जाते हैं इकट्ठे होते हैं तो वहाँ ऐसे लोगों को स्टेज पे बैठा दिया जाता है जिनको अपनी हिस्ट्री का नहीं पता, तो वो क्या हिस्ट्री किसी को बताएंगे, वो क्या बताएंगे कि यहाँ क्या, क्योंकि जब आपको जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री लैंड जिस कंट्री मुल्क के अंदर आप रह रहे हैं उसका आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ेंगे, उसको जेन शीन नहीं करेंगे, उसके अलावा फिर उनके जो वक्ती जो कानून बने हुए हैं उनके उनके आपको ना पता हो, और इनके आपको डिफरेंट कल्चर, जैसे हमारे डिफरेंट कल्चर्स हैं इनके भी डिफरेंट कल्चर्स हैं, उन कल्चर के लोगों के साथ आपकी मुलाकात होनी चाहिए, उन लोगों से आपको बात करनी चाहिए। अब कल आपने कितना मसरूफ दिन गुजारा, आपका बेटा आपके साथ था, वो कैमरा लेके हर जगह लोगों से बात कर रहा था, मुख्तलिफ एम्बेसडर से बात कर रहे थे, आप ही कर रहे थे, आपने पहले मेयर जो थे यहाँ के सोशल डेमोक्रेट के सीन उससे भी तफसीलन बात की, दूसरों से भी बात की, तो ये चीज होती है जो बंदे को इन्फॉर्म करते हैं और जो वक्त के ऊपर लोगों को बात करते हैं। लेकिन अगर हम लेग पुलिंग पे लगे रहे कि भाई फलाना को और ये देखो इससे फलाने एम्बेसडर के साथ खड़ा हो गया है और ये उससे पता नहीं क्या बात कर रहा, मैं इसके साथ बात करना चाहता हूँ, ये रास्ता दे, तो ये चीजें ये लेग पुलिंग नहीं होनी चाहिए। और ये बिल्कुल आप अपना बात सही करते हैं कि यहाँ पे इस रेडियो की इस आपकी आवाज के जरिए हमने लोगों में ये शौर उजागर किया कि ये जो हमारे अपने गांव की बिरादरी सिस्टम से हमने लोगों को निकाला है, लेकिन अब हमें इन बिरादरी सिस्टम से निकले हुए बच्चों का को ये भी शौर देना है कि ठीक है आप एजुकेटेड हैं, आप बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम मानते हैं, लेकिन सियासत जो है दो तरह की होती है, एक होती है सियासत जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं, एक होता है कि आप लॉ को जानते हैं, लॉ को जो जानता है वो होता है पार्लियामेंटेरियन, वो लॉ मेकर्स होते हैं, वो कानून को बेहतर तरीके से समझते हैं, उनको पता होता है कि कानून के अंदर किस तरह हेरा फेरी की जा सकती है, किस तरह इसको सॉल्व किया जा सकता है, किस तरीके से ये गैर कानूनी चीजें जो है जजों के अदालतों के जो फैसले आए हैं उनके खिलाफ ये काम कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये इंसानियत के खिलाफ जो इन्होंने किए हैं। तो हमारे हमारे हमें सिर्फ ये नहीं चाहिए कि हमें यहाँ पे राजा गफूर साहब जो अक्सर बात करते हैं ये प्लाई एम हो, ये फलानी चीज हो, ये फलानी चीज हो, भाई हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि हमें ज़हनी सुकून होना चाहिए, हमें रूहानी सुकून होना चाहिए, हमें एहसास होना चाहिए जैसे हम 70s 80s में 90s में थे इस मुल्क के अंदर। हमें बाहर निकलते हुए खौफ नहीं आना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। आप यकीन कीजिए कि सबसे ज्यादा अगर कोई इस वक्त बदतमीजी करते हैं, ये डेनिस तो करते हैं, ये तो उनका मुल्क है, लेकिन हम लोग उनसे दशरथी आगे, हम लोग मेरी मेरे दो या तीन हफ्ते पहले एक बंदे से बात हो रही थी और उससे ये बात हो रही थी कि उसको बैंक जो था वो बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए उसका अकाउंट ही खोल रहा था, तो बड़ा गुस्से में था। तो मैंने उसको कहा कि भाई तुम पहले अपने घर जाओ, उनसे जाके पूछो कि भाई तुम्हारे घर वालों ने क्या किया, या मुझसे पूछो कि हमने क्या किया। हमने लोन लेके हम लोगों ने अपने बिजनेसों को बैंक करप्ट किया, हमने पैसे वापस नहीं किए, तो बैंकों ने हम पे इतबार कैसे करना है। अब क्योंकि मसले इतने बढ़ गए हैं और बैंक चाहते हैं कि भाई अगर आप लाख दो लाख का तो कर रहे हैं फ्रॉड तो कोई बात नहीं, अगर आप टैक्स में और मंथ में ही मिलियंस का फ्रॉड कर रहे हैं तो फिर आपने बैंकों के साथ कितना लोन और कितने फ्रॉड किए। तो इसलिए ये गवर्नमेंट ने इन लोगों को इजाजत दे दिया कि आप जिसको चाहे रखें, अभी भी अच्छे बैंक हैं, अभी भी अच्छे लोग हैं, अभी भी बैंकर्स अच्छे हैं जो आपको जाती तौर पर जानते हैं और वो आपकी पोजीशन को देख लेते हैं कि भाई ये बंदा कैसा, तो अभी भी वो आपकी गुफ्तगू से आपके कारोबार से मुतासर होकर आपको बैंक अकाउंट खोलने की इजाजत दे रहे हैं। लेकिन एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो काउंसलर हजरात हैं जो इस वक्त एक्टिव हैं, वो बजाय छुट्टियों पे घूमने फिरने के, उनको ये चाहिए कि कुछ दिन अपनी उस अवाम को भी दे जिस अवाम ने उनको वोट दिया। मैंने एक सियासतदान से राजा साहब गुस्साही से बात की तो उसने कहा कि मैंने जब वोट लिया था तो मैंने बड़ी रोटी छोटी खुआ ली थी, खुआ दी थी, आसान उन चार साल बाद बारी आएगी तो फिर रोटी छोटी खुआ दूंगा। तो मैंने कहा इसका मकसद ये नहीं कि कोई तुम्हारी रोटी का भूखा है, बात असल में यह है कि तुम बैठो बेशक चाय के कप पे बैठा लो लोगों को, उनसे डिस्कस करो कि हमारी रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स क्या है, क्या हम इन रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जो हकीकी मायने में सिर्फ और सिर्फ कम्यून के जो काउंसलर है वो कर सकते हैं। तो राजा साहब वहां पे खामोशी और इसके अलावा कोई बात नहीं।
1: शाह साहब आप मसला मसाइल उठाते हैं, उजागर करते हैं। शाह साहब मुझे बताएं कि जब 1400 साल पहले आज़ाद किया गया था, गुलामी ख़त्म हो गई थी, आज 2026 में है, तो आज भी अगर लोग गुलाम बनना चाहते हैं उसमें मेरा और आपका क्या कसूर है या दूसरे लोगों का क्या कसूर है?
0: जी आपने बड़ी अच्छी बात की, गुलामी हमें गुलामी से आज़ाद किया था अभी 1947 में 14 अगस्त को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, लेकिन उसके बाद आप ये देखें कि 1954 के बाद हम लोग फिर गुलामी की जंजीर हमारे गले में पड़ गई और हम लोग जो है इस वक्त हमारा जो बाई लॉ हमारा जो बादशाह है वो किंग चार्ल्स है इंग्लैंड का, तो हमने कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप को कॉमनवेल्थ से हमने छुटकारा नहीं लिया, क्योंकि हमारे सियासतदान और बड़े अमीर आदमी जो है वो ये समझते हैं कि अगर हम कॉमनवेल्थ से बाहर निकल जाएंगे तो कल को ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, इंग्लैंड में और दूसरे जो ममालिक हैं जहाँ पे 37 कंट्रीज हैं वहां पे हम अपना कारोबार बड़ी आसानी से या वहां पे अपनी जदादे जो हैं उनको नहीं रख सकते, क्योंकि आपको पता है कि आप लूट मार करके पैसा इंग्लैंड ले जाए तो वहां पे उनके छोटे छोटे जो बाहर जजीरे हैं उन जजीरों में आप जो मर्जी कारोबार करें, बल्कि आप लंदन के बैंकों में पैसा रख दें तो वो आंखें बंद कर लेते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं। तो ये चीजें जो है हमारे यंगस्टर्स को सोचना चाहिए कि हमें आजादी किस तरीके से हासिल होगी। आजादी खून बहा से नहीं होती, आजादी जो है आप अपनी अकल से लेते हैं और अकल इस्तेमाल करने के लिए हमारे यंगस्टर्स जो है आज के जमाने में बहुत शौर रखते हैं। सिर्फ ये है कि इस शौर के साथ उनको ताकत मुहैया की जाए, उनके पीछे लोग हों, यानी कि जैसे कि अभी मेरे भाई छोटे भाई ऐसा में जा रहे हैं, इनके साथ अगर 50-60-100 बंदा जो है उनकी गैदरिंग हो और वो ऐसा वालों को पता लगे कि ये बंदा सिर्फ अकेला नहीं आ रहा है, इसके साथ कितने बंदे आ रहे हैं, वो एक पावरफुल बंदे की हैसियत से उसमें शामिल होगा, और ये बड़ी
1: तो
0: अच्छी चीज है।
1: जमहूरी जो प्रोसेस है इसमें तो कोई किसी को ना रोक सकता है ना मना कर, हर आदमी की अपनी सोच होती है, किसी पार्टी को भी ज्वाइन कर ले। लेकिन शाह साहब एक सवाल पैदा होता है कि जिस तरह वो फ्री ग्रोने पार्टी बने थी, आज़ादी से बोलना आज़ादी से बात कहना, तो क्या शाह साहब ये सारी पार्टियां उसी तरह की बातचीत करने की आज़ादी देते हैं, फिर कहते हैं फलां को निकाल दिया, फलां ने ये बात नहीं मानी थी, फलां ने निकाल दिया, जिस तरह मोहन लुकेटफ की पार्टी में ईसाई में किसी बंदे ने कोई बात की थी तो उसे पार्टी से फारग कर दिया, तो शाह साहब क्या ये लोग सारी चीज़ें सोच कर जाते हैं?
0: देखिए जी, जब आप किसी पार्टी के मेंबर बनते हैं तो वहां पे आपको जो पार्टी का मंशूर है वो बताया नहीं जाता कि हमारी पार्टी का ये मंशूर है, हम इस पे सख्ती से हम इस पे अमल दरामद करते हैं, आप ये करेंगे। मैं अगर चाहूं तो मैं रंसा का भी मेंबर बन जाऊं, डेंस फुलके पार्टी का बन जाऊं। हाँ, डेंस फुलके पार्टी मुझे ये कहेगी कि तुम है ही मुसलमान, तुम मेरी पार्टी में कैसे आ सकते हो, वो ये उतराज उठाएंगे। लेकिन मैं अगर उसको कहूँ नहीं नहीं मैं मेरे ख्याल आपसे मिलते हैं तो मैं बड़ा बुरा हूं, तो वो कहेंगे ठीक है अब तुम हमारी तरह के आ जाओ। तो असल मसला ये है कि आपने जब किसी पार्टी को ज्वाइन करना है तो उसका पहले आप देखें। अभी मैंने ये जो बात की थी पहले स्टार्ट में सियासत में कि ये जो SF है, जो अपना इन इज लिस्ट है, अल्टरनेटिव है, रेडिकल फ्रंट है, इन्होंने किस बात पे वोट लिए थे? इन्होंने वोट लिए थे फलस्तीन के साथ खड़े होने के लिए, इन्होंने वोट लिए थे जो यहाँ के मुसलमानों पे और फॉरनर्स के ऊपर जो जुल्म हो रहा है यहाँ डेनमार्क के अंदर, उनके लिए इन्होंने आवाज उठाई, और इनको सबसे ज्यादा वोट जो है वो कोपेनहेगन और वेस्टाइन और दूसरे इलाकों से इनको वोट मिले, और ये सामने आया। और इनको इन्होंने किसकी मुखालफत की? इन्होंने PDM की गवर्नमेंट की मुखालफत की, इन्होंने सोशल डेमोक्रेट की मुखालफत की, इन्होंने कोपेनहेगन से सोशल डेमोक्रेट को बाहर निकाला, उनकी मेयरशिप जो है वो छीन ली। तो अब क्या है? उसी पार्टी के साथ ये दोबारा खड़े हो गए हैं। अब होगा क्या? होगा क्या? किस तरीके से इन्होंने किया? क्या ये हमारी आवाजों को जो है उनसे बात करना चाहेंगे? नहीं, ये सिर्फ वो बात करेंगे जो इनके अपने पूरे मुल्क के लिए अच्छी है। ये बात करेंगे कि हमारे डांसों को जो है हम भी डांस हैं, हम यहाँ रहते हैं, हमें मेडिकल कैसे मिले, हमें फलानी चीज स्कूलों में फलानी चीज, ये चार पांच चीजें मंजूर करके तो ये इनके साथ ज्वाइन करके बैठ जाएंगे। ये कभी ये नहीं कहेंगे कि भाई आप लोगों ने वो महकमा जो है अपना उलिंग का ये डेस्ट्रिक्ट में ले गए और पूरे मुल्क में दूसरों को ये सहूलत दिया तो कोपेनहेगन और वेस्टर्न के लोगों को आप क्यों नहीं ये सहूलत दे रहे, आप इसको वापस लाए या इनकी पावर सर्विस के साथ इनको चिल्कार दिया जाए, इनको सामना, ये बातें नहीं करेंगे। ये वो बातें करेंगे जो इनके अपने मफाद के लिए है और जिसके लिए इन्होंने हाँ की है। तो हमारे लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि क्या इसके अंदर हम इनके मेंबर बनकर इनकी सोच को मदम कर सकते हैं, इनकी फौज को वापस ला सकते हैं, जब इनको पता लगे कि इनको बताया जाए कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, हमारे आने वाली नस्लों की प्रॉब्लम्स क्या है, हम किस तरीके से क्राइम को रोक सकते हैं, हम किस तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेट हो सकते हैं, जैसे कि 70s और 80s और 90s में हमारे साथ होता था, यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट किया जाता था, लोगों की सुनी जाती थी, लोगों के साथ कम्युनिकेशन किया जाता था, कम्यून इतनी पावरफुल होती थी कि वहां का जो एक सेंस बहंडा होता था वो एक किस्म का पावर मिनिस्टर होता था, वो जो फैसला कर देती थी या कर देता था उसके ऊपर बहुत कम चीज होती थी और बड़े ईमानदारी से वो आपकी बात सुनते थे। लेकिन अब आपको पता ही नहीं है, आपके ऊपर जो सियासतदान बैठे हुए हैं उनको नहीं पता कि नीचे क्या हो रहा है। हमने इतनी आवाज उठाई, बल्कि ये इंटरनेशनल अपना पूरे नेशनल लेवल पे डायलॉग में गई कि भाई यहाँ पे पीने का पानी साफ नहीं होता, पानी पीने का पानी सबसे गंदा तरीन है, जहरीला पानी है, इन्होंने इलेक्शन में पानी को लेकर चले और कहा कि ये 35% गंदा तरीन पानी है, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये 35 नहीं है 70% गंदा पानी है और प्रूफ कर सकते हैं, हर जगह से प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन क्या हमारे काउंसलर्स इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि कैंसर फैल रहा है, ज्यादा पैसे लग रहे हैं। इंसान को सेहत के लिए क्या चीज करनी चाहिए, आप पार्कों में चले जाएं, उन लोगों कानून बना हुआ है कि कुत्ते को जो है अगर वो कहीं पे वो कुत्ता पार्टी करता है तो उसको आप उठाए, उसको नहीं जाकर अपना स्कार्फ पहन जहाँ गंदगी फेंकने की कोई डब्बा आपको मिलता है उसके अंदर फेंके। लेकिन यह क्या कर रहे हैं, आप जाए स्टंट पे चले जाए वहां पे भी आपको कुत्तों की पार्टी मिलेगी हर जगह। तो कानून जो है ये इसका मजाक जो है ये हमारे अपने बनाए हुए लोगों ने किया है। हम तो अपनी जुबान वाले लोगों को कह सकते हैं ना कि हमने आपको वोट दिया, सिर्फ इससे ये वोट दिया कि आप पाकिस्तानी है, लेकिन काश के हमने डेंचो को वोट दिया होता और डेंचो के साथ बैठ के उनको अपनी प्रॉब्लम बताई होती तो वो हमें बेहतर तरीके से हमारे मसाइल को जो है वो सुलझा सकते थे। जी राजेश साहब,
1: शाह साहब आप सारी बातें डेनमार्क की जमहूरियत की कर रहे हैं, तो शाह साहब जिनके लिए आप फाइट करना चाहते हैं वो खुद जमहूरियत पसंद ही नहीं है।
0: जी अल्लाह के फजल से बच्चे जो हैं ये सारे जमहूरियत पसंद है, जितनी यंग जनरेशन है फर्स्ट और सेकंड जनरेशन है ये सारी जमहूरियत पसंद है। जो फर्स्ट जनरेशन जिसमें हम लोग आए हैं हमें अख्तिलाफ राय है लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना कि चंद एक लोगों में अख्तिलाफ पाया जाता है। लेकिन असल मसला यही है कि क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमारी कल आप देख रहे मेला के अंदर, आज भी मेला लगा हुआ है ट्रांसफर में, जहां जहां पे भी मेला होगा आप देखेंगे कि हमारी खवातीन की तादाद बहुत ज्यादा है। क्या हमने इन खवातीन के हकूक के लिए सोचा है, हमने कभी ये सोचा है कि डेनमार्क के अंदर सबसे ज्यादा स्किल मिस जो है वो मुसलमान औरतों के अंदर हो रही है, इसकी वजूहत क्या है, क्या हमने कभी इनको स्टॉप करने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म कम्युनिटी के लेवल में या किसी बड़ी इलाकों के इलाकों में बनाया
1: है? जो मेले होते हैं बड़ी अच्छी बात है, रौनक लगती है। शाह साहब ये स्टॉल लेते हैं 500 से लेकर 3000 तक स्टॉल लेते हैं, उसके ऊपर पैसे कमाते हैं, तो उसके ऊपर सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। कल कलान जो है ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बहुत सारी चीज़ें पड़ी होनी चाहिए सेहत के लिहाज से, जब भी कोई इवेंट हो तो आपने देखा कि कल माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा था, बड़ी तादाद में आप वाली बात ख्वातीन थी। तो ये जो स्टॉल लगाते हैं शाह साहब ये तो अपने पैसे के लिए, ये कोई खिदमत खल के लिए तो स्टॉल नहीं लगाते।
0: इस कैमरा का मैं तजियागार और शासदान की हैसियत से मैं ये कह सकता हूँ कि कल जो लगा है इसके ऊपर मैंने पूरी इंक्वायरी की। यहाँ पे 800-900 करोड़ जो बड़े से बड़े थे उन्होंने 800-900 से ज्यादा उनसे वसूली नहीं की, और जो छोटे थे उनसे 200-300 भी उन्होंने की। उसकी वजूहत क्या है कि जब इन्होंने पहली दफा खुर्रम शेख ने ये काम शुरू किया था तो लोग गंदे छोड़ के चले गए थे, टॉयलेट गंदे थे, किचन गंदे थे, फर्श के ऊपर काफी गिरी हुई थी, चाय गिरी हुई थी, खाने पीने की चीजें गिरी हुई थी, तो उनको साफ करना, उनको स्पेशल केमिकल के साथ उनको वापस लाना ये बड़े, और इनको काफी उस वक्त मेरे ख्याल में 9-10 हजार के करोड़ के करीब जुर्माना भी हुआ था। तो फिर उन्होंने ये सारा एक मीटिंग बनाई और इसके अंदर यह फैसला किया कि बजाय हम लोग अपने पास से या इस चीज को खत्म करें, हम जो यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं उनसे एक मामूली सी फीस जो है वो ले लें, और उसको अब ये नहीं हम कर सकते कि हम लोगों को कहें जी कि ये आप 10 मीटर की जगह ले लें

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: मोहतरम सामाईन, मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है मुनाफिकीन। कुरान हकीम के शुरू में अल्लाह ताला ने इंसानों को तीन ग्रोहों में तकसीम फरमाया है, नंबर एक मोमन, नंबर दो काफिर और नंबर तीन मुनाफिक। सबसे पहले अल्लाह ताला ने मोमिनीन का मुख्तसर जिक्र फरमाया है, फिर कुफार का जिक्र सिर्फ एक ही आयत करीमा में किया है और आखिर में मुनाफिकीन के बारे में इंतहाई तफसील से जिक्र फरमाया है। इन मुनाफिकीन का जिक्र कुरान मजीद में इतनी तफसील से इसलिए है कि ये माशरे के बदतरीन अफराद हैं। कुफार से कहीं ज़्यादा नुकसान इस्लाम को इन मुनाफिकों की वजह से पहुँचा है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान हकीम में इन मुनाफिकों के किरदार को पूरी तफसील से बेनकाब किया है। यही नहीं बल्कि इनके दर्दनाक अंजाम की भी मुफस्सल खबर दी है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान करीम में इन मुनाफिकीन के बारे में क्या फरमाता है। सूरतुल बकर की आयत नंबर 8 और 9 का तर्जमा है कि और बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम खुदा पर और रोज़े आखरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते। ये खुदा को और मोमिनों को चकमा देते हैं मगर हकीकत में अपने सिवा किसी को चकमा नहीं देते और इससे बाखबर हैं। मोहतरम सामईन, ज़रा गौर फरमाइए, हालांकि ये मुनाफिकीन अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहे हैं और रोज़े क़यामत पर यकीन का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार नहीं कर रहे। ये उस दौर के यहूदियों का रवैया था। और ये कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार ना किया जाए किसी भी

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए ला रहे हैं। 19/5/2026 का प्रोग्राम है। इस वक्त हमारे साथ एक्टिविस्ट तजिया निगार मोहतरम अदनान अली अमीन हमारे साथ हैं। अदनान, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको।
2: वालेकुम अस्सलाम दादा साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप कैसे हैं दादा साहब?
1: अल्लाह का शुक्र अदनान, मौसम तो बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है, लेकिन बर्निंग न्यूज आप क्या ला रहे हैं?
2: ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जैसे आपको मालूम है यहाँ पे नेगोशिएशन चल रही थी डेनमार्क की गवर्नमेंट की, और उसमें जो कांग जोनस पॉलसन, उसने एक फैसला किया कि मैं एक गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वी विंस्टा लिपार लांग से कंसर्वेटिव मिस्टर पची मुखाड़ा के साथ मिलकर ये गवर्नमेंट बन जाए। तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज है, अब देखते हैं कि कमिंग आवर्स में क्या होता है, क्योंकि रास लुके ने तो यही कहा है, ये उसने तो गुस्सा किया और वो थोड़ा शॉक में था जब उसको ये पता चल, और उसने कहा है कि ये एक फॉर पे लॉन्ग है जो उड़ नहीं सकता। तो ये तो एक बड़ी क्या कहते हैं अजीब बात होगी, और दूसरी बात मैं ये कहूँ कि ये फिर बहुत ही कम सर्पली गवर्नमेंट होगी, क्योंकि इसमें खाली सिक्स ऑफ मंडेरा है।
1: तो अदनान, क्या इतनी मंडेट से हुकूमत बना सकते हैं? 46 बंदे इकट्ठे करके हुकूमत बन सकती है?
2: बन तो सकती है, ये तो कोई मसला नहीं। उसको क्या कहते हैं, कोई स्टोरे पच्ची है जो है बाकी की आ जाए तो फिर तो उसके पूरे हो जाते हैं ना, 90 तो नहीं होते, 87 हो जाते हैं ना उसके। मगर मेरे ख्याल से तो ये बड़ा मुश्किल है, और आज रात को 9 बजे पता चलेगा जब लास्लो के आसमूस मीटिंग में आएगा वो क्या करते हैं और क्या नहीं कहता।
1: तो आपकी पार्टी सोशल डेमोक्रेट की मेते जो मौजूदा केयर टेकर वजीर आजम है, वो क्या कह रही हैं?
2: वो कुछ नहीं कह रही, वो गायब होगी हुई है, हो सकता है कि वो भी अब वो तो देखेंगे ना कि स्ट्रेटजी क्या करनी है।
1: तो जिस तरह पहले ल्यूके वो गायब हो गए थे, इस तरह मेते गायब हो गई है,
2: हो सकता है कि ये कमिंग आवर्स में, ये जो अभी 6 घंटे हैं इसमें लास्ट ल्यूके की और मेरे फर्स्ट की डेफिनेटली बात तो होगी अब, और हो सकता है कि मेरे
1: चांस है कि ये ऐलान कर दें कि हमारे पास अक्सरियत होगी या पूरी
2: नहीं, अभी तो नहीं ना कर सकता ये तो, अब देखें लास्ट ल्यूके गास्म हुसैन जो है उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या करता है। और मैं तो, मेरे लिए ब्रदर साहब बड़ा मुश्किल है कि उसके लिए बड़ा मुश्किल है, मुझे उसके लिए हर सिनेरियो मुश्किल है, मगर मेरे लिए बड़ा मुश्किल लग रहा है कि वो गवर्नमेंट में ना बैठे सारी उम्र। क्या कहते हैं आप देखें, वो 2001 से लेके नहीं सॉरी 2001 से लेके अली प्राइम मिनिस्टर जब हिलसोनी स्मिथ थी वो गवर्नमेंट में बाहर था उस वक्त, उसके बाद फिर एक पीरियड में वो बाहर हुआ है, फिर अब वो बैठा हुआ है, अब उसके पास पॉसिबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट का हिस्सा बने। और आपको ये भी हमेशा याद रखना चाहिए, इसको हर चीज के लिए 90 सीटों की जरूरत पड़नी है तो ये बड़ी सरप्ली गवर्नमेंट है। मगर मैं तो व्यूअर्स को यही कहूंगा कि मेरा जो अंदाजा है कि शायद नया खोंगली इंतकाल आ जाए नया, क्योंकि कमिंग आवर्स में हो सकता है कि लास्ट लुके और मेरे फर्स्ट की बात तो डेफिनेटली होगी, अभी ये मान ही नहीं सकता ये दोनों आपस में बातचीत ना करें।
1: अदनान, ये सियासतदान इतने मैच्योर नहीं है कि इतने दिन भी ले लिए और हुकूमत नहीं बन रही, जो है अफरा तफरी का शिकार है ये
2: सब। अब तो हुकूमत किसी ना किसी तरह से जरूर बनेगी, और मसला ये है ना कि देखें अब तो उसने आप प्लो प्लॉक में तो एक किस्म का मीरा जो वो मीरा गैकेंग जो चाहता था वो तो डेड कर दी है, जो लास्ट लुके ने कोशिश की थी कि वो बने और क्या कहते हैं वो हुकूमत ही बननी चाहिए थी जो इनकी कोशिश थी। मगर इसमें ये भी तो मसला है ना कि इसने जो चीज पेश की है, चीजें बहुत करना चाहता है, और इसने ये नहीं बताया कि उनके पैसे कहाँ से आएंगे। तो इधर से आप देख लें कि ये बड़ा मुश्किल है कि ये क्या करने चाह रहा है, और मुझे लगता है कि स्कूटलोन पास ने डिस्परेट हो गया प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए।
1: और ये जो आप किसकी कह रहे हैं, जो विंस्टर पार्टी के चेयरमैन है?
2: जी, जो विंस्टर के चेयरमैन है। और अभी ये भी तो हो सकता है ना कि कमिंग आवर्स में जो है लास्ट लो के खास में उसने अब जाएगा वापस, बात देखेगा अपनी اپنی ٹیم کے ساتھ, تو ہو سکتا ہے کہ کمنگ آور نے وہ یہ کہہ دی کہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ نیا کھونگلی ہونا سے آئے, کیونکہ اس نے یہ جو اس نے بات کہہ دیا نا کہ پھو پہ لانگ ہے, اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ راضی نہیں ہے اس حکومت کے لیے.
1: تو جب یہ میٹنگز پہ جاتے ہیں تو ساری باتیں کرتے ہیں, جمہوریت کا نام چلتا, ظاہر ہے جمہوریت میں اسی طرح ہوتا ہے, اسی لیے جمہوریت کا نام لے کر بچا جا سکتا ہے ان چیزوں سے.
2: جی وہی راجہ صاحب, مگر راجہ صاحب میں بھی دیکھوں, میں بڑا حیران ہوں کہ یہ جو اس کو یہ جو چیز ہے اس میں یہ بھی تو دیکھیں نا کہ مسئلے بہت ہیں. آپ نے ہر چیز کے لیے ٹھیک ہے وہ تینوں اسٹوڑے پچیاں بن جائیں گی, اس کے پیچھے آ جائیں گی, مگر مسئلہ یہ ہے کہ دوسری پارٹیاں جو ہیں ان کے پاس بھی 84-85 سیٹیں ہیں, تو وہ بھی تو یہی چاہیں گے نا کہ یہ گورنمنٹ جلدی ٹوٹے. تو مطلب یہ ہے کہ
1: تو کہیں یہ تو نہیں ہے کہ سیٹوں کا انتظار ہے کون سی وزارت ملتی ہے یا کون سی جو کمیٹیوں میں اچھی جگہ ملتی ہے, باقی تو اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں.
2: ارے یہی ہے نا لال صاحب, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ سوسلون فالس نے جیسے آپ کہہ دیا کہ میں ساری پارٹیوں کے ساتھ ویکنگز کھول لے پہنلہ کرنا شروع کرنے لگا ہوں, اور اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ صبر اس کو یہ کرنا چاہیے کہ تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ابھی لاسٹ لوک رات کو آ کے کہہ دے کہ مجھے یہ چیز قبول ہی نہیں ہے, تو پھر تم کیا کرو گے؟ جب رات کو 9 بجے وہ آئے گا آپ اس کو پریشرائزنگ کریں, ٹھیک ہے آپ اس کو پریشرائزنگ کر سکتے ہیں, مگر اس نے بھی تو یہ دیکھنا ہے نا یہ چیز چل سکتی ہے کہ نہیں چل سکتی لانگ سیکٹر پہ. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کمنگ آورز میں کیا ہوتا ہے, کہ یہ گورنمنٹ بنتی ہے کہ نہیں بنتی,
1: بنتی ہے یا کہ نہیں بنتی ہے. عدنان آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اس وقت ہمیں نیوز دی, آپ کا بہت شکریہ, آپ سے رابطہ رہے گا.
2: مہربانی پہ دادا صاحب, اللہ حافظ.
1: سامعین ناظرین یہ تھے عدنان امین علی جو کہ آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے تھے. سامعین ناظرین اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو آپ کہنا چاہتے ہیں تو ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر, ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے.
3: سامعین کرام, FM 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: एफ एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।
1: एफ एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।